मिनीवेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 24, तदनुसार 15 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: संत कबीरक भजन सुनी मौन गंगा जल जकां पवित्र भ जाए छे। एही संतक जन्म एक गोट अत्यंत निर्धन परिवार में भेल छलानी, किंतु जखन कबीर भक्तिक शक्ति लऽ कऽ हिंदू आ मुसलमान दुनूक मन जीत लेलनि, तखन क्यो एकरा अपना मन में नहीं राखलक जे ओ हिंदू छलाह कि मुसलमान। हमरा लोकनि कमल के देखै छी, किंतु जाहि पाक सँ ओ जन्मै छ तकरा पर की ध्यान जाइ छ। जखन एहि महान संतक देहावसान भेलनि, हुनका भक्त सब में झगड़ा आरंभ भ गेल। मुसलमान कही छलाह जे कबीर मुसलमान छलाह, आओ हुनका पार्थिव शरीर के माटि में गाड़ि दी। दोसर दल कही छल जे कबीर हिंदू छलाह, आओ हमरा लोकनि हुनका शरीरक दाह संस्कार करी। हुनक पार्थिव शरीर उज्जर चद्दर सँ झाँपल छल। यदि हुनका बुते संभव होतनि तो ओ ठाड़ भ कऽ कहतथि, अहाँ लोकनि व्यर्थ झगड़ा नहि करू। किंतु कबीर तो संसार त्याग कऽ चुकल छलाह। दुनू दल कबीरक शरीर के लेबाक हेतु आगा बढ़ल। तखनहि चद्दर हटबतहि देखल गेल जे कबीरक पार्थिव शरीर ओहि ठाम नहि छल, छल कि उज्जर सुगंधित किछु फूल। संत कबीरक भक्त लोकनि एहि दृश्य के देखि आनंद प्रवाह में डूबी एक दूसराक

0: आलिंगन करय लगला।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है गोपी चंद्र झा की वार्ता तुलसी की आधुनिक खेती।

श्रोता लोकन सुप्रभात, आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। तुलसी का आधुनिक खेती औषधीय और व्यावसायिक उपयोग जना तेल हर्बल चाय के लेल कैल जाते छ। एकर उन्नत किस्म अछि जना RBL1, राम तुलसी, श्याम तुलसी, कर्पूर तुलसी, वन तुलसी, जंगली तुलसी, होली तुलसी। तुलसी का आधुनिक खेती कम लागत में भारी मुनाफा कमावे वाला एकटा बेहतरीन औषधीय व्यवसाय अछि। उन्नत किस्मक बिया या पौधा से खेती शुरू कैल जाइत अछि और वैज्ञानिक तरीका से पटौनी और देखभाल करे पर एकर एक एकड़ से 3 से 4 क्विंटल तक उपज पा सके छी, पात और बिया के रूप में आसानी से पाबि सके छी। वाणिज्यिक स्तर पर उचित पैदावार और तेलक लेल तुलसी के चुनिंदा किस्म लगाओल जाइत अछि। यूरोपीय बेसिल, स्वीट बेसिल, एकर उपयोग मुख्य रूप से तेल निकाले लेल कैल जाइत अछि। काली और राम तुलसी औषधीय कार्य और हर्बल चाय के लेल सबसे उत्तम अछि। बौ और रोपाई का उचित समय नर्सरी तैयार फरवरी से मार्च या फिर जून से जुलाई, मानसूनक शुरुआत में नर्सरी में बिया बौ कैल जाइत अछि। रोपाई जखन पौधा 12 से 15 सेंटीमीटर के भऽ जाए तखन एकर रोपाई मुख्य खेत में करबाक चाही। पांती के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधा के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी राखी। खेतक तैयारी और खाद। खेत

0: लगभग 2 से 3 बेर जोताई कऽ माटि के भुरभुरा बना ली। बाव या रोपाई के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 20 टन सरल गोबरक खाद मिलाबी। तुलसी के फसिल में रासायनिक खादक आवश्यकता आमतौर पर नहीं होइत अछि। पटौनी और खौर पात नियंत्रण, रोपाई के तुरंत बाद पहिल पटौनी करी। गर्मी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर और सर्दी में 15 दिनक अंतराल पर आवश्यकता अनुसार पटौनी करबा के चाहिए। पौधा के उचित बढ़वारक लेल कमौनी के खेत के खौर पात से मुक्त राखी। कटाई और उपज, पहिल कट रोपाई के लगभग 90 से 95 दिनक बाद जखन गाछ नीक जना फूले के अवस्था में आबि जाए तो मुख्य फसिलक कटाई कैल जाते है। पौधा के जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटबा के चाही ताकि नव शाखा फिर से उग जाए। तुलसी वनस्पति औषधीय उपयोग के गाछ है। वर्तमान में एकरा कईटा खांसी के दवाई, साबुन, बाल के तेल बनाल जाते है। एकर खेती कम जमीन जैमे जलक खेती का प्रबंध हुए नीक जना होइत अछि। बलुई दोमट जमीन एकरा लेल बहुत उपयुक्त होइत अछि। एकरा लेल उष्ण कटिबंध आ कटिबंध दोनों प्रकार के जलवायु अछि। जमीन के तैयारी ठीक जना कऽ लेबाक चाही। खेत के दोसर सप्ताह तक तैयार भऽ जेबाक चाही। बिया, एकर खेती बिया से होइत अछि, मुदा खेती में बिया के खेती सोझे तौर पर नहीं कयल जाइए। पहले एकरा स्काउट तैयार करबाक चाही आ बाद में एकर ऑपरेशन करय पड़ैए। पौधा तैयार करना, जमीन का 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदाई कह के पाइपलाइन आदि का तैयार करवाक चाहिए। 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से गोबरक सरल खाद नीक जना मिला देवाक चाहिए। 1 मीटर x 1 मीटर आकार के सतह से उभरल क्यारी बनाओल गेल अछि जेमे कंपोस्ट और नवीनतम जे ओकरा अहाँ के खाद अछि ओ मिला देवाक चाहिए। 750 ग्राम से 1 किलो बिया 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होइत अछि। बिया का गन्ना 1:10 के अनुपात में रेत या रेतक मिलान का 8 से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर पाती करवा के चाहिए। बिया का गहराई बेसी नहीं करवा के चाहिए। बाव करे के समय 15 से 20 दिन के बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उत्सव जन उपयोगी होते अछि। 5 से 6 सप्ताह में अहाँ के तैयार भ जाइए। पहल माह के बाद करवा के चाहिए। दोसर कमौनी और नमहर पैमाना पर गुराई के अहाँ कमौनी कऽ सकै छी। एकरा लेल 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबरक खाद खेत में देबाक चाहिए। एकर अलावा 75 से 80 किलोग्राम द्वितीय जन, 40 से 40 किलोग्राम उदाहरण पोटास का आवश्यकता होइत अछि। जँ उपचार में नीक जना तखन फूल आबि जाइए तो नीचा का पत्ता का आकार का चित्रांकन लागि तकर कटाई कऽ लेबाक चाही। बीमारी के 10 से 12 सप्ताह बाद कटाई के लिए तैयार भऽ जाइत अछि। बौ केला के 10 से 12 सप्ताह बाद कटाई।
1: के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में हॉर्मुज जलडमरू मथे से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित

0: और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह की भेंट वार्ता, आँख में चोट लगने पर क्या करें।
2: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे आंख में चोट लगना, इस विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। डॉक्टर साहब, आंख में चोट लगना या फिर धूल या कुछ ऐसी वस्तु का प्रवेश कर जाना जिससे आंख में न सिर्फ तकलीफ होती है, कई बार आंख की रोशनी तक चली जाती है
3: जी।
2: सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है धूल
3: जी।
2: उसमें क्या करें लोग?
3: अगर किसी आंख में अचानक धूल चला गया, आंधी में है या बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के आंख में धूल झोंक दिया
2: जी,
3: तो उसमें पहला उपचार के तौर पर चिकित्सक तो बाद में देखेंगे उसको, कम से कम साफ पानी से उसको जितना आप धो सकते हैं उतना धोइए। ये आंख रगड़िए मत, क्योंकि जब भी आप आंख को रगड़ेंगे तो धूल कण के से आप आंख को रगड़िएगा तो कॉर्निया डैमेज करेगा, वो छिल जाएगा और अल्सर बना देगा। तो आप इसी स्थिति में वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आइए अगर साफ सुथरा पानी मिलता है उससे धो लीजिए। उसके बाद भी आपको कष्ट रहता है तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप डालिए
2: और फिर डॉक्टर
3: जी फिर डॉक्टर से मिलिए।
2: कुछ लोग लोहे का काम करते हैं,
3: व्यवसाय है जिनका, बिल्डर हैं
2: या बिल्डर का काम करते हैं, तो कई बार चिंगारी
3: स्मिथ वाले हैं, लोहार का काम है,
2: चिंगारी या लोहे का बुरादा या कोई कण आंख में अचानक चला जाता है,
3: आंख में अचानक चला जाता है, तो उसके लिए आपको उसमें आंख में, अब देखिए अगर बहुत छोटा कण है हो सकता है आंसू के थ्रू भी निकल जाएगा, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको

0: में कोई कष्ट नहीं है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है, आँख में दर्द नहीं है, आँख को में फोटोफोबिया, जिसमें कि सूरज की रोशनी में या जनरल रोशनी में आपका आँख बढ़िया से खुलता है, इसका मतलब है कण उसके अंदर नहीं होगा। जब वो कण कॉर्निया पर लॉज कर जाएगा तो आँख से पानी आएगा, आपको आँख में दर्द रहेगा, आँख को आपको धूप में नहीं खोलने देगा। तो वैसी हालत में आपको उसको कण को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए, और ज़्यादा लेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, तो उसमें डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो वो आप विशेषज्ञ के सलाह से उसको अगर अंदर पड़ा हुआ है तो उसको निकलवाइए, और जैसे सलाह दे वो उसी
1: कई बार कुछ ऐसा लिक्विड है जिसका लोग काम करते हैं, केमिकल कह लीजिए या फिर कभी चूना या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, अगर वो आँख में चला जाए तो
0: वो एक उसमें दो चीज़ है, या तो अचानक आपके आँख के अंदर, जैसे आदमी गाड़ी को जो ड्राइवर है वो उठाया उसमें एसिड रहता है वो आँख में चला गया, या फिर पेंटर है जो पेंट कर रहा है दीवार को उसके आँख में चूना चला गया, दोनों आँख के लिए घातक है। और एसिड से ज्यादा घातक चूना है, चूना को लोग कम घातक समझता है बट अल्कली ज्यादा डैमेज करता है। कारण है कि वो जब अंदर जो आँख के अंदर जाता है तो वो उसमें उसको घुला देता है, वो उसको घुलाता है, सोपनिफिकेशन कहलाता है वो। तो उसको पहला उपचार क्या है कि आप उसमें भी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से आँख को धोइए,
1: साफ पानी,
0: एकदम साफ पानी से, जितना 5 लीटर 10 लीटर जितना भी धो सकते हैं, ताकि उसका कहीं पर भी कानून होगा।
1: और डॉक्टर साहब, धोने की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए?
0: बहुत तेज में आंख में छींटा नहीं मारिए, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में एक तरह से, अगर आप ये है अगर अच्छे से धोना चाहते हैं तो सलाइन में जो आता है आरएल वगैरह उसको आईवी सेट से आंख के पास लगा देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: उसको ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में, तो जितना आँख के अंदर जाएगा, जितनी गंदगी होगा, तो एस्ट्रायल भी है वो, साथ साथ वो पानी भी है,
1: लेकिन पूरी सावधानी।
0: हाँ जी जी, अगर वो उतना उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नल का पानी जो है साफ सुथरा, ट्यूबवेल का पानी, उससे आँख को धोइए।
1: और बच्चे कभी कभी तीर धनुष चलाते हैं, गेंद या फिर कुछ ऐसे खिलौने, उसकी वजह से भी कभी कभी आँख में।
0: हाँ जी जी, बच्चे को उससे चीज से, नोकीली चीज से उसको मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वो नोकीला चीज हाथ में ले।
1: पेंसिल या पेन
0: से भी हो तो उसका वो उसका उससे भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो उससे लिखने के लिए ठीक है, खेलने का उसको डिस्करेज कीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर आंख में लगने के बाद हो सकता है
1: दुर्घटना कहकर नहीं आती।
0: हाँ जी जी जी, उसमें
1: अगर दुर्घटना
0: हो गई तो फिर उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए।
1: कभी लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं गाड़ी पर और दुर्घटना हो जाती है,
0: देखिए जी,
1: और आँख से खून निकला है।
0: हाँ, आँख में खून निकला, विजन ठीक है तो चिंता नहीं ली। देखिए कभी कभार कि आदमी बहुत घबराया हुआ है कि मेरा आँख एकदम लाल हो गया है, मगर पूछिएगा उससे कि आँख तो लाल है, दिखता है ना सब चीज, तो बोलेगा कि नहीं दिखता ठप है, तो उसमें घबराना नहीं है, दैट इज ए सब कंजक्टाइबल हेमरेज। अगर देखिए कि आँख उसका लाल नहीं है मगर उसका रोशनी गड़बड़ा गया, इसका मतलब भीतर में उसको गड़बड़ है, या तो विट्रस हेमरेज हो गया, या मैकुला को डैमेज किया, या रेटिनल को डिटैच किया, वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके कि जिस सीधे आंख लाल है उसको दिखता हो।
1: आंख में
0: जी
1: चोट लगे किसी भी प्रकार से, धूल जाए, लोहे का बुरादा जाए, या ज्वलनशील पदार्थ जाए, तीर धनुष से लगे, या फिर दुर्घटना में आंख चोटिल हो जाए, अपने विशेषज्ञ से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से
0: एक चीज हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोशिश कीजिए कि ये आपको डैमेज नहीं करे, धूल आपके अंदर आंख में नहीं जाए। जो लोग उस व्यवसाय में वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगा कर काम करे, और बच्चा को आप नोकीली चीज से ये कराइए, उसको डिस्करेज कीजिए। अगर हो जाता है तो उसको प्रॉपर अर्ली स्टेज में उसको दिखलाइए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
1: डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, पहले संवेद स्वर में ये देश वंदना।

ये देशवंदना अभी आप संवेद स्वर में सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं ये भक्ति वंदना।

अभी आप संवेद स्वर में गणपति वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये शिव वजन।

ये स्वर था जगजीत सिंह का। आइए आप सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भजन।

ये स्वर था अनुपमा देशपांडे का। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थी कविता कृष्णामूर्ति। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इस सभा में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन के 12:30 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का प्रसारण होगा।

0: देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर, दोपहर 1:15 पर पुनः आप फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। दोपहर 2:10 पर हम आपको सुनवाते हैं रोजगार समाचार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर से आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 3:00 और संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम तरुण कुसुम। इसके बाद संध्या 5:40 पर पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। विद्यापति गीत आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। संध्या 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। और किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी संध्या 7:00। संध्या 7:52 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी आप सुनेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों के रंग। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। 6:55 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि, या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विक स्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितम् यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य

0: संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युततन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतरतन्त्रांशवित्तीयप्रौद्योगिकीसंस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य, तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं सञ्चालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिकप्रतिष्ठानां 44,900,000,000,000 रूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां संकटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् संकटावधौ शोणितपुरजनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव संकट स्थितिः उत्तरपूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6 पराजितम्। अक्षरपटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।

0: श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वीं मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वीं मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार
1: और साथ ही गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: और हम सब दिन कार्यक्रम के शुरुआत सुविचार से करे छी, क्योंकि अगर विचार भोरे भोर नीक हुए तो दिन बहुत नीक कटत ते द्वारे आजुक सुविचार के हम सब फिर लौ रहल छी कार्यक्रम में।
1: देखिए आज का सुविचार है आशीष, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। यानी कि हम लोग जो सुबह में उठते हैं, यानी कि हमारा जो काम है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहें, तब तक चलते रहें जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लिए हो। तो निरंतर चलते रहना यानी निरंतर प्रयास से हमें मंजिल प्राप्त होती है।
0: निश्चित गप छे, अगर हम अहाँ सोच ली कि हमरा करबाक अछि तो ओहि दिशा में लगातार हम सब अगर आगू बढ़त जाय छी तो सफलता भेटते अछि। कै बेर एहन होइत अछि कि बहुत आदमी आधा से बेसी सफर अहाँके आगू बढ़ि जाइ छथि मुदा फेर लगै छनि कि आब ओहिमे हमरा ई काज हमरा बुते नहि हैत, तो फिर अहाँ सोचू जखन आधा से बेसी बढ़ चुकल छी, फिर अहाँ ओतेक घुरि रहल

0: छी तऽ आधा सफर तऽ अहाँसँ बेसी अहाँ फेर वापस आबि रहल छी, ओकर वाला किया ने कनि आओर आगू बढ़ब तऽ अहाँ ओहि काजमे सफल सेहो भऽ जायब। ताहि दुआरे कखनो रुकबाक नहि चाही, निरन्तर प्रयास सफलताके कुञ्जी अछि। ई हरदम अगर दिमागमे लऽ कऽ आगू बढ़ब सफल हेबे करब। आओर जे व्यक्ति सफल होइ छथि से इतिहासमे सेहो नाम करै छथि। आओर कार्यक्रममे आइके दिन इतिहासमे क्या महत्वपूर्ण अछि सेहो पर हमसभ चर्चा कऽ ली।
1: आशीष, आजका जो महत्वपूर्ण घटना है यानी आज का जो इतिहास है वो 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने HMS बेलोरो फोन पर आत्मसमर्पण किया, वो आज ही का ही दिन था। और 1823 में इटली में रोम में स्थित सेंट पॉल आउट साइड द बॉल्स के प्राचीन बेसिलिका में आग लग गई और वो नष्ट हो गया, वो भी आज ही का दिन था। आज ही के दिन 1834 ईस्वी में लगभग 356 वर्षों बाद स्पेनिश इंक्विजिशन को आधिकारिक तौर पर भंग का ऐलान कर दिया गया यानी भंग कर दिया गया। आज ही के दिन यानी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और कुछ प्रमुख हस्तियों के जन्मदिन की बात करें तो अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन अमेरिकी अभिनेता ब्रायन हॉस्टिन ग्रीन का जन्म हुआ था। तो इस तरह से आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई घटनाएं इतिहास में घटी हैं जो यादगार है।
0: तखन हम सब चर्चा करते रही और जानकारी प्राप्त करते रही कि आज के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। और कार्यक्रम में आगू बढ़े छी, अपने सबके मैथिली गीत सुनबे छी।
1: तो आइए सुनते हैं अरविंद कुमार झा के स्वर में ये मैथिली सुगम संगीत।

0: तो आशीष, ये मैथिली सुगम संगीत हम लोग सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में, और कितना प्यारा सा ये गीत था, जोड़े जोड़े चिट्ठी भैया जी के नाम। भाई का ये प्रेम इस गीत के माध्यम से हम लोगों के बीच रखा गया। गायक कलाकार अरविंद कुमार झा को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आशीष कुमार सिंह से हाल चाल।
1: धन्यवाद गोपाल जी। आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। सहरसा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला भर में अपराध नियंत्रण के लेल एक दिनक गश्ती लगातार कयल जा रहा है। पुलिस सदर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंक, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकान और वाहन सबके सघन जांच कलत। सहरसा नगर निगम नागरिक सुविधा सबके विस्तार के दिशा में होल्डिंग टैक्स भुगतान के ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर चुकल छत। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में SBI के सहयोग से ई पोर्टल के शुभारंभ कयल गेल। आब शहरवासी घर बैसल सुरक्षित और सरल डिजिटल माध्यम से होल्डिंग टैक्स जमा कर सकै छत। प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र के विद्यार्थी सब के डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के जे इंतजार छलन से आई समाप्त भ रहल अछि। SBK+2 बालिका उच्च विद्यालय परिसर में भोरे 10 बजे राजकीय डिग्री महाविद्यालय के उद्घाटन प्रखंड प्रमुख डेजी कुमारी करतत। महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य प्रोफेसर NK पांडे उद्घाटन के सब तैयारी पूरा कर चुकल छत। प्रारंभिक सत्र में हिंदी

अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आ मनोविज्ञान विषय के स्नातक के पढ़ाई एहिठाम शुरू होयत। प्रत्येक विषय में 60 सीट निर्धारित कयल गेल अछि। पहिल चरण में कुल 300 विद्यार्थी के नामांकन के प्रावधान अछि। एखन धरि 125 छात्र छात्रा नामांकन करा चुकल छथि। नेपाल के तराई क्षेत्र में बरखा होय के कारण कोसी नदी के जलस्तर बदल रहल अछि। प्रशासन पूरा तरीका से सतर्क छथि और वीडियो अच्युतानंद और राजस्व अधिकारी राकेश रंजन विभिन्न स्तर पर तटबंध सबके निरीक्षण कयलथि। मधुबनी में मुख्यमंत्री सहयोग शिविर कार्यक्रम के समीक्षा कयल गेल। प्रशासनक अनुसार अधिकांश शिकायत के निष्पादन भऽ चुकल अछि। सड़क, स्ट्रीट लाइट, बिजली कनेक्शन और आवास योजना से संबंधित काज तेजी से भऽ रहल अछि। मधुबनी बेनीपट्टी पुपड़ी 45 किलोमीटर में नवका रेल लाइन के फील्ड सर्वेक्षण कार्य पूरा कऽ लेल गेल अछि। सर्वे रिपोर्ट बनबे के कार्य प्रगति पर अछि। मधुबनी में 15 करोड़ रुपया के लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण होयत। ई भवन अल्पसंख्यक समाज के लेल बनाओल जा रहल अछि। प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा मधुबनी के बैसार भेल और एहिमे निर्णय लेल गेल कि जुलाई 2026 में प्रधान शिक्षक सबके नियुक्ति के एक वर्ष पूरा होय के उपलक्ष्य में 26 जुलाई के जिला मुख्यालय मधुबनी में प्रधान शिक्षक सबके एकटा विशाल सम्मेलन आयोजित कयल जायत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड प्रथम आ द्वितीय वर्ष के परीक्षा के शेड्यूल जारी कऽ चुकल छथि। द्वितीय वर्ष के परीक्षा 24-28 जुलाई धरि जखनकि प्रथम वर्ष के परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त धरि होयत। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी सब अपन तकनीकी दक्षता और नवाचार क्षमता के उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार के दिस सँ पटना में आयोजित राज्य स्तरीय नवाचार प्रदर्शनी में अपन दूटा प्रोजेक्ट प्रस्तुत कयलथि। दुनू परियोजना के चयन 18 जुलाई के मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन के लेल कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 में पीजी बॉटनी विभाग के अंतर्गत एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में नामांकन नहीं भऽ पायत। राज्यपाल सचिवालय एकरा नामांकन पर रोक लगा देलत। एहि पाठ्यक्रम के पुनः शुरू करे के लेल विश्वविद्यालय के नियमानुकूल प्रस्ताव पठबे के से निर्देश देल गेल छनि। अलीनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीनगर में तत्काल अस्थायी रूप से राजकीय डिग्री कॉलेज के संचालन वर्तमान सत्र में आई से शुरू कयल जा रहल अछि। ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज शुरू होय से क्षेत्र के लोक सब में बहुत प्रसन्नता छन। एखन धरि तो 68 छात्र छात्रा सब नामांकन करा चुकल छथि। सिंहवाड़ा प्रखंड के सनहापुर में 15 जुलाई यानी आई से शुरू होय वाला डिग्री कॉलेज के शुभारंभ के तैयारी के निरीक्षण काल्हिखन भूमि सुधार उप समाहर्ता संजीत कुमार, सीओ अंकुर राय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार कयलथि। गाम में बनि रहल कॉलेज में पढ़ाई शुरू करे के लऽ कऽ अभिभावक और छात्र सब में उत्साह छनि। उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में डिग्री कॉलेज चलबे के लेल परिसर, वर्ग कक्ष, पेयजल, शौचालय सबटा व्यवस्था के जायजा लेल गेल। दरभंगा में नवका जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार काल्हिखन पदभार ग्रहण कयलथि। एहि दौरान मिथिला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भूपति नाथ चौधरी हुनका पाग चादर और माला पहनाकर स्वागत कयलखिन। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मुक्त भारत अभियान के सफल बनबे के लेल दरभंगा में जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में बैसार आयोजित कयल गेल। गणित और विज्ञान विषय में व्यवहारिक शिक्षण के बढ़ावा दे के लेल विभूतिपुर में परियोजना आधारित कार्यशाला का आयोजन कयल गेल। शिक्षक सब छात्र सब में जिज्ञासा जगबे और नैदानिक स्तर पर सीखे के प्रक्रिया पर जोर दलत। शाहपुर पटोरी के एएनडी कॉलेज के एनएसएस इकाई रेड रन प्रतियोगिता का आयोजन कलक। छात्र वर्ग में शिवम कुमार प्रथम स्थान जखन की छात्रा वर्ग में काजल कुमारी प्रथम स्थान पर रहलत। आब आई बुध दिन ट्रैफिक ब्लॉक नहीं लेल जायत जहिसँ

0: सहरसा आबयवला 5 ट्रेन रद्द नहीं हैत। किछु काज बचला के कारण 15 जुलाई के बंगाली बाजार फाटक पूरा बंद आब नहीं कैल जायत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सुपौल में 3,290 परिवार रूफटॉप सोलर प्लांट लगबे के लेल आवेदन कैलत। मधुबनी जिला में 14 अगस्त धरि 290,015 उच्च जोखिम वाला लोक सब के टीबी स्क्रीनिंग कैल जायत। एहि अभियान के उद्देश्य संभावित मरीज सब के चिन्ह के उपचार आ पोषण में सहायता केनाय अछि। सदर अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी चंद्र किशोर पासवान काल मंगल दिन डीएमसीएच में आग से सुरक्षा के व्यवस्था का निरीक्षण कैलत। दरभंगा में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलाल रेड्डी जिला में 39 पुलिस अधिकारी सबके तत्काल प्रभाव से बदल दलत। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: आशीष कुमार सिंह से हालचाल सुने थे। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रम में क्या इरादा है?
0: जखन गप सब केलहुँ हँ तऽ हमसब मौसम के संबंधी सेहो जानकारी प्राप्त कऽ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई धरि के मौसम पूर्वानुमान जारी कयल गेल अछि। एकर अनुसार एहि अवधि में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणी पश्चिम दिशा से हवा चले के संभावना व्यक्त कयल गेल अछि। एहि अवधि में सापेक्ष आर्द्रता भोरे में 80-85% आ दोपहरिया में 50-60% रहे के अनुमान अछि। एहि अवधि में गप करी तऽ अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री आ न्यूनतम 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे के अनुमान व्यक्त कयल गेल अछि। ओते बेगूसराय के छोड़ि के उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में 15-17 जुलाई के बीच मेघ गर्जे के संग संग वज्रपात के संभावना सेहो व्यक्त कयल गेल अछि।
1: तो आशीष ये मौसम संबंधी आप जानकारी दे रहे थे। अब थोड़ा सा एक अल्प विराम लेते हैं।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: लोगों के लिए म्यूजियम बन गया है। लोग उस विरासत स्थल को देखकर और ये अनुमान लगाते हैं कि पहले किस तरह से ये विरासत स्थल बनाया गया और इसको संयोग के आज तक रखे हुआ है। लेकिन कई ऐसे विरासत स्थल हैं आशीष जो आज आप देखेंगे तो वो खंडर जैसा बना हुआ है और वो खंडर ये बताता है कि ये क्या था पहले। आप राज्य का भी उदाहरण ले ले तो आप अपने दरभंगा राज्य में भी देखेंगे कि एक समय था कि जब बहुत ही बेहतर ढंग से वो किला, हालांकि आज भी वो उतना ही खूबसूरत है और आज भी कहें तो मिथिला का एक बहुत बड़ा विरासत स्थल है। तो इस स्थल में जो भी कमी हो गई हो या जो भी इसका जो है टूट फूट गया हो कहीं भी या भंग हो गया हो तो उसको संभालना हम सब का काम है ताकि ये विरासत जो स्थल है वो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए एक मतलब बात होगी। कई पीढ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कभी ऐसा भी था और आज भी है।
1: निश्चित गप छै गोपाल जी। और ई हमर अहाँके पूर्वज सबके जोड़ैत अछि। अहाँके कतौ न कतौ अगर हमसब देखी तऽ नालंदा हमरा बतबैत अछि कि भारत कखनो शिक्षाके केन्द्र रहल अछि। एखनो अगर किछु हमसब अगल बगलमे राजनगरके जखन चर्चा करैत रही कि राजनगरके किला एखन अहाँके एतेक ढहि गेल भूकम्पमे, मुदा एखनो जायब तऽ ओकर नक्काशी, ओकर अहाँके भव्यता देखाइमे बुझाइत अछि कि हमर अहाँके कतेक भव्य रहल अछि, हमर अहाँके इतिहास कतेक भव्य रहल अछि, हमर अहाँके सांस्कृतिक धरोहर कतेक महत्वपूर्ण रहल अछि। तऽ एकरा स्थल सबके जीवंत करैके लेल बच्चा सब के एहिठाम निश्चित लऽ कऽ जेबाक चाहिए, हुनका ओ सब ओतऽ बुझत। बहुत रास कारण छै एकर अहाँके खत्म होइके, जेनाकि एखन हमसब राजनगरके चर्चा केलहुँ, भूकम्प सेहो खत्म भऽ गेल, बरखा अबैत अछि, अहाँके गाछ वृक्षके जड़ि भऽ जाइत अछि, ताहिसँ खराब भऽ जाइत अछि, कए बेर लोकसब तोड़ फोड़ कऽ दै छथि। एखन हमसब अगर अपन दरभंगा किलाके गप करी तऽ कए टा पोस्टर बैनर लिखल पढ़ल किलाके देवार पर देखबै।
0: बिल्कुल,
1: ई हमर अहाँके कर्तव्य अछि कि ओहिपर हमसब ने लिखी नहि ककरो लिखऽ दियन नहि, किएकि बचायब अगर धीरे धीरे शुरुआत करब तखने ओकरा बचा सकै छी।
0: बिल्कुल। और अभी आशीष आप नालंदा की बात कर रहे थे तो नालंदा हम गए थे तो पूरा ईंटा उटा जो था वो बिखरा हुआ था और वो जो जिस स्थिति में वो है, हालांकि बहुत कुछ उसका मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन जिस स्थिति में हम उसको देखे तो उसे यह हम अनुमान लगा सकते थे कि ये अपने समय में कितने भव्य रहा होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय तो पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखता था, क्योंकि कई देशों के लोग वहाँ आके अपनी शिक्षा पूरी करते थे। तो हमारा जो भी विरासत है उसका संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये कितने हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पिछले जो हमारे पीढ़ी रहे हैं, उन लोगों के लिए जो एक जो धरोहर था वो तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो ये धरोहर है वो हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि उस पर जो है हम लोग मतलब ध्यान दें और उसको गंभीरता से लें। कहीं भी जो भी यादगार स्थल है, जो भी जिसे हम अपने विरासत, जिसको हम अपना विरासत मानते हैं, तो उसका संरक्षण भी तो आवश्यक है।
1: निश्चित गप छै। और हमर अहाँके कर्तव्य बनैत अछि कि हम अहाँ संरक्षण करी, एकर दिशामे आगू बढ़ी। सबसे पैघ गप छोट छोट काज अगर किछु तीन चारि टा कऽ ली तऽ हमसब अहाँके अपन तरीकासँ धीरे धीरे आगू बढ़ब, एहिसँ जागरूकता सेहो हैत। कोनो स्मारक पर जाकऽ लिखी नहि, ओतऽ कचरा नहि फेंकी, ओतऽ अहाँके पोस्टर बैनर नहि चिपकाबी। इसकुलके जे बच्चा सब छथि तिनका सबके विरासतके महत्वके बारेमे बतेबाक चाहिए। कमसँ कम सप्ताहमे अहाँके कोनो एन जी ओ छथि, कोनो अगर क्षेत्रमे काज कऽ रहल छै तऽ हर इसकुलमे जाकऽ बच्चा सबके अपन अगल बगलके सबटा विरासतके बारेमे बतेबनि तऽ हुनकर मोनमे अबैवला समयमे ओकर प्रति प्रेम जगतनि। विरासत मित्र बनिकऽ सेहो हमसब अहाँके एक दोसरके सहयोग कऽ सकै छी, एक दोसरके जोड़ि सकै छी। आओर स्थानीय हस्तशिल्प सब जे होइ छै तकरा कीनी, जैसे कि कलाकार सब जिंदा रहतथि आओर ओ विरासत सेहो बचत। तऽ कतौ ने कतौ एकरा बचेनाइ छोट छोट काज कऽ कऽ हम अहाँ बचा सकै छी। ओना समय जे छै से अहाँके सङ्गे चलैत अछि आओर समय नहि बचै

तो आशीष, ये प्यारा सा गीत हम लोग सुन रहे थे और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मिथिला की आवाज़ आशीष कुमार सिंह की बातचीत मनीष झा से। तो सुनिए मिथिला की आवाज़।

0: नमस्कार, मैं आशीष और अभी मेरे साथ हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत मनीष झा जी। सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि दरभंगा से बाहर तक का सफर कैसा रहा है और कैसे इस मुकाम तक पहुंचना हुआ।
1: नमस्कार, मैं मनीष कुमार झा। दरभंगा से मेरी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई दरभंगा से ही हुआ है। के बाद धीरे धीरे बीटेक एमटेक करते हुए हम गुड़गांव तक पहुंचे। गुड़गांव में 2006 से मैं हेड कर रहा हूं। ये हम लोग एज ए फाउंडर मेंबर हम तीन दोस्त थे, हम सब ने मिल के वहाँ पे खोला हुआ है, जिसमें अलग अलग तरह के कोर्स इंजीनियरिंग MBA BBA BCA डिप्लोमा इंजीनियरिंग बी फार्मेसी डी फार्मेसी BEd DEd बहुत सौ तरह के कोर्स चलते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेट के छात्र उसमें आके एडमिशन लेते हैं और अपने भविष्य बनाते हैं। इसमें बिहार के तरफ से मेरा अलग एक लगाव है और मैं यहीं से पला बढ़ा हूँ, तो बिहार के बच्चों के लिए हमारे एक स्पेशल ऑफर हमेशा रहता है। उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं या 10th 12th करने के बाद उनको यदि पता चलता है कि यहाँ पर मुझे अच्छा एजुकेशन और प्लेसमेंट मिल सकता है, ट्रेनिंग मिल सकता है, तो हम काफ़ी बच्चे हमारे जो यहाँ के हैं जो BEd DEd और अलग अलग इंजीनियरिंग के कोर्सेज किए हैं, अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी में भी हैं, कम से कम बहुत सारे मेरे ख्याल से 1000+ बिहार के अलग अलग स्कूलों में शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, फार्मेसी बैकग्राउंड के बच्चे अपने अपने कंपनी में काफ़ी हाई पे पे कार्यरत हैं अभी। तो इस तरह का हमारा, जब मैं शायद 23 या 24 साल का था तब से कॉलेज का मतलब ओपनिंग करने का हम लोगों ने सोचा था। तो आई थिंक हम लोग यंगेस्ट थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए इंडिया में थे, और आज तक चल रहा है सफ़र, आगे चलता रहेगा। यूनिवर्सिटी की भी अभी चल रही है हमारी, वहाँ पर भी प्लान कर रहे हैं, तो यही है जिस हिसाब से चलते रहेंगे आगे।
0: दसवीं और बारहवीं के बाद कैरियर के जो पहले के कोर्सेज थे या फिर कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें बदलाव आया है, तो अब किस तरीके के कैरियर ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए छात्रों को?
1: पहले केवल दसवीं के बाद बच्चे जनरली डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं, किस तरह के स्ट्रीम ले रहे हैं, कॉमर्स है, साइंस है या आर्ट्स है। उसके बाद अभी दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्टों में यदि बच्चे जाते हैं तो उनको नौकरी के लिए बहुत इधर उधर करना पड़ता है, और यदि ये कॉमर्स में जाते हैं तो आगे 12th

0: कॉमर्स करके सीए और अलग अलग तरह के अकाउंटेंसी के कोर्सेज कर सकते हैं, आगे एमबीए कर सकते हैं। यदि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्लस टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना होगा उनको, और यदि बायो से हैं तो फार्मेसी के लिए भी आजकल कोविड के बाद फार्मा कंपनीज में बहुत सारी वैकेंसीज है जहां पर बच्चों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यदि आप अच्छे से कहीं से भी फार्मा डी फार्मा की डिग्री लेते हैं तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ऑप्शन है आज के डेट में। तो फार्मेसी बैकग्राउंड आज बहुत बूम पे है आज के डेट में। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, AIDS, AIML कुछ नए कोर्सेज आ गए हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। इनमें भी बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आजकल आप लोग ChatGPT और AI इन्हीं सब का चल रहा है, तो इसमें बच्चे उसी बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। और BBA BCA में जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो BBA तरह के और BCA के कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट मैथ या बायो का नहीं रहता है। आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी उसमें ले सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शन है। ये तो केवल इंजीनियरिंग और इस तरह के फील्ड हुए, इसके अदर देन भी आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, फोटोग्राफी कोर्सेज है, होटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग की कोर्सेज है, जिसमें बच्चे हर तरह के बच्चे उसमें जहां भी उनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूं उन्हीं में उन्हें जाना चाहिए। ये नहीं कि गार्जियन के प्रेशर में या दोस्तों के कहने से आप चले गए। आप अपना इंटरेस्ट पहले खुद के अंदर डेवलप कीजिए, देन उस फील्ड में एडमिशन लेंगे आप तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी।
1: और बच्चों को किन बातों पे ध्यान देना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है?
0: पहले तो अपने एकेडमिक बैकग्राउंड जो है उसको फोकस करें, और अपना जो आपका स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, और आपके जो GK है, GS है, इनको आज के डेट में क्या होता है कि आदमी मोबाइल से अलग अलग तरह के गलत नॉलेज लेके भी अपने आप को नॉलेजबल बनाने लगते हैं। तो वो नॉलेज ना लें, किताबों की नॉलेज लें, और जो सही है इंटरनेट पे उसको नॉलेज लें, और अपना स्किल डेवलपमेंट जरूर करें। कंप्यूटर की नॉलेज जरूर होना चाहिए, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मस्ट है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जरूर डेवलप करें। और जो आपकी कोर्सेज होते हैं 3 ईयर या 4 ईयर जो भी कोर्स है, पहले उस एकेडमिक ईयर को कम्प्लीट करें मैक्सिमम, आगे अगले साल की प्लानिंग उस हिसाब से करें। आपको डेफिनेटली जॉब प्लेसमेंट 100% मैं श्योर करता हूँ कि आप यदि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो 100% आप प्लेसमेंट, आप जॉब अचीव कर सकते हैं।
1: और आप मिथिला से हैं तो मिथिला के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, जिनको भी जरूरत हो कहीं भी हो, मिथिला में भी आजकल बिहार में भी ढेर सारे इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, हमारे भी जानकारी में कितने हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा अभी वीक है, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अच्छे कभी भी आएंगे मिथिला के कहते हैं तो मैं वैसे ही उनको अपने, मेरे लिए हमेशा उनका, मेरा कमरे का ऑफिस हमेशा खुला रहता है उनके लिए, एनी टाइम कोई भी बच्चा कभी भी कॉल कर सकता है, जहां तक मेरी सपोर्ट की जरूरत है हम अवेलेबल रहते हैं।
1: जी धन्यवाद। एखन मनीष झा जी से गप सब हुई छले, और खास कर के इनकर गप से बहुत चीज निकल के आयल, और एखुनका समय के संग सफलता के परिभाषा सेहो बदल रहल अछि। अगर गप करी पहले सफलता के पैमाना जमीन जायदाद रह, तकर बाद सरकारी नौकरी, तो कखनो डिग्री, और एखन 21वीं सदी के अगर गप करी तो एखन अहाँ के कौशल एकर परिभाषा बनि चुकल अछि। आई के युग विज्ञान तकनीक और प्रतिस्पर्धा के युग अछि। अ युग में आगू बढ़े के लेल हाथ में हुनर भेनाइ जरूरी अछि, और तै दुआरे आई कौशल जे अछि से सफलता के नवका पहचान बनि चुकल अछि।
2: बिल्कुल आशीष, कोई भी कौशल हो, कोई भी हुनर हो, वो हमें आगे ले जाता है जीवन में, हमें रोजगार देता है, और हमें ही नहीं बल्कि कई आदमी को जिनके पास कौशल है उनसे जुड़ने का वो अवसर मिलता है, और वो भी उनके साथ रहकर उस कौशल को सीखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम अपने जीवन में जो सफल होते हैं कौशल के माध्यम से, वही आज की पहचान बन गई है। और आप देखेंगे कि आज के युवा कौशल की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे, बिल्कुल सही आपने कहा, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र में हो, जिसमें भी उनकी पकड़ है, रुचि है, उस कौशल को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं तो जीवन में वो सफल होते हैं और अच्छा धनोपार्जन भी करते हैं।
1: हाँ, तो जखन धन के गप कलो तो आई के समय में देखल जाए तो एक प्लम्बर, एक टाइल्स के मिस्त्री, एक इंटीरियर डिजाइनर, AC टेक्नीशियन, बिजली मिस्त्री, ये सब महीना के 60,000 से लाख लाख रुपया धरि से बेसी कमा रहल छथि, और हिनकर सबके मांग दिन ब दिन बढ़ रहल छनि, क्योंकि जे हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहल अछि, घर सबके अहाँके बढ़ रहल अछि, हिनकर सबके मांग बढ़ले जा रहल छनि।

0: ओतै एकटा अहाँके छै जे ग्रेजुएशन कॉलेज छथि जे स्नातक कॉलेज छथि ओ डिग्रीधारी अहाँके छथि ओ 15,000 नौकरी ताकि रहल छथि हाँ तऽ कतौ ने कतौ कौशल आओर डिग्रीके अन्तरके आब ई समयमे बुझऽ पड़त डिग्री जरूरी अछि डिग्री सङ्गे सङ्गे कौशल ज्ञान भेनाइ मस्ट अछि तखने अहाँ आगू बढ़ि सकै छी कैरियर बना सकै छी
1: बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन आशीष हम जो पढ़ाई करते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूली या कॉलेज से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अपनी जगह है लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके वो शिक्षा आगे जा करके कहीं ना कहीं वो रोज़गार से जुड़ता है और इस बात को मानना होगा कि शिक्षा के पीछे कहीं ना कहीं से वो रोज़गार है कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बन करके वो उसका रोज़गार हुआ हाँ कोई इंजीनियर बनता है और कहीं जा करके वो काम करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में जा करके वो जो इंजीनियरिंग का पद संभालते हैं वहाँ का काम देखते हैं तो वहाँ का वो उनका रोज़गार हुआ तो जब बात रोज़गार की हो तो रोज़गार के लिए कौशल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक ये ऐसा हुनर है जो आपके हाथ से कभी जाएगा नहीं और जहाँ तक हम थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे धनोपार्जन की तो असीमित आप कमा सकते हैं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कोई ये दायरा नहीं है कि हम कितना कमा सकते हैं आप जरा देखिए ना अभी आप प्लम्बर मिस्त्री की बात कर रहे थे और सारे लोग मैकेनिक की बात कर रहे थे अब घर घर में टीवी है हर के हाथ में मोबाइल है अगर वो ख़राब होता है तो उसको कौन ठीक करेगा आज अपने अपने देश में आज कितनी जनसंख्या वो सब कुछ जानते हैं और शायद ही किन्हीं के पास मोबाइल ना हो आज के युग में तो वो ख़राब भी होता है मशीनरी चीज़ है तो उसको ठीक कौन करता है वही करेगा जो उसका कौशल जानेगा जो उसका हुनर जानेगा जिसके पास उसका कौशल होगा और फिर वो धन उपार्जन करेगा
0: निश्चित तौर पर और अगर देखिए उदाहरण अगर देखल जा सके जर्मनी दुनिया का 4वीं सबसे पैघ अर्थव्यवस्था है ओतय 60% बच्चा 10वीं केला के बाद सीधा वोकेशनल ट्रेनिंग करे छथि यानी डॉक्टर इंजीनियर बनैके दिशामे वोकेशनल ट्रेनिंगके सङ्गे सङ्गे ओ अहाँके स्किल्ड टेक्नीशियन सेहो बनै छथि आइके समयमे देखी तऽ भारतमे 2030 धरि 10 करोड़ कुशल कर्मचारीके कमी भऽ जायत हेल्थ केयर निर्माण आईटी ग्रीन एनर्जीमे सबसे बेसी डिमांड रहत तऽ कतौ ने कतौ अगर अहाँ कौशलके दिशामे काज करै छी अपन ऊपर काज करै छी तऽ ई जे गैप छै तकरा भरि सकै छी हमसब आओर अहाँके बहुत रास काज पैसाके सङ्गे भेटत ताहि दुआरे कहै छी कि हमर सब अहाँके जे मिशन अछि से कौशलके दिशामे आगू बढ़ी हमसब आओर आगू बढ़ैत बढ़ैत कार्यक्रममे समय से हमरा सबके की छै कहि रहल अछि आगू बढ़ैके लेल तऽ कनि छोट सनक एकटा की छै समसामयिक घटनाके चर्चा करैत हमसब गीतनाथपर खत्म करी
1: बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी
0: सहयोग कार्यक्रमके गप करी तऽ जिला पहिल बेर जे राज्य स्तरपर आयोजन भेल अछि ताहिमे CM जे छथि खुद 100 समस्याके सुलझौलत आओर राज्यके 211 नवका डिग्री कॉलेजमे पढ़ाइ आइसँ शुरू भऽ रहल अछि तऽ ई एखन हमसब अहाँके की छै किछु समसामयिक घटनाके सेहो चर्चा कयलहुँ आओर चलैत चलैत किएक ने अपन श्रोता सबके एकटा गीत सुनबैत चलियै

0: आब समय आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रम से विदा लेके लेल कहि रहल अछि, तऽ हमरा आशीष के
1: और मुझे गोपाल, हम दोनों को दे अनुमति।
0: नमस्कार
1: मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि। फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै।
3: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
7: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए।

0: इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
7: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
6: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
8: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर

0: करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
2: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
3: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने

0: जोर देकर कहा, नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी व तजारती मुआहदा आज से अमल में आ गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है, जिसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशावर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे भारत और बरतानिया की दिफाई शराकत दारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के आवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरक अजम का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती मुआहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए ताबनाक इक्तसादी शराकत दारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे ताउन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशावर अफराद और उनके आजिरों को फायदा हासिल होगा। ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग में सड़कों, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयले और मेहनत के शोबों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक 19 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।

0: कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में अहम और स्ट्रेटेजिक माजनियाती ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेंगे। कानों की वजारत ने कहा है कि ये नीलामी 9 रियासतों में वाकई 20 अहम और स्ट्रेटेजिक माजनियाती ब्लॉक्स के लिए होगी, जिनमें 13 नए निशानजद ब्लॉक्स और दूसरी मरतबा पेश किए जाने वाले 7 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये माजनियात साफ सुथरी तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, खाद, दिफा और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए अहमियत के हामिल हैं। वजारत ने नीलामी के 7 मरहलों की तकमील समेत 88 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स में से 56 की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तरह 63% से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वज़रा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वज़रा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उन्वान है लचक, जिद्दत, तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर के लिए, के तहत ये इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वज़रा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामियों को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियत, रोजगार पर तआवुन को तकवीत देना है। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नावा जोबन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदाम का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वजीर आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जहां इख्तिराई टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी पर मबनी मसनूआत और सनती तरबियती इदारों, ITIs तरबियती इदारों और जेर तरबियत अफराद के जरिए तैयार करदा प्रोजेक्ट का मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत ने 19 जैली शोबों के लिए मुल्क का खिदमात की पैदावार का पहला आजमाइशी इंडेक्स ISP जारी किया है, जिसमें पहली बार ऐसा है कि बाकायदा खिदमात के शोबे में मुख्तसर मुद्दत की सरगर्मी का माहाना पैमाना फराहम किया गया है। इस पहले इंडेक्स में 2024-25 को बुनियादी साल मानते हुए अप्रैल 2026 को भी शुमार किया गया है और भारत के खिदमात के शोबे के तकरीबन 60% हिस्से को शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका ने अबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग अबनाए हुरमुस से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनाब ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमेरिका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि वो एक मुआहदा कर ले, वरना वहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदारा ने इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैम पर, जहाँ कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे, हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुँचाया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी और तजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए हैं।

0: नई दिल्ली में नमनिकानों से बात करते हुए विदारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आबनाए हुरमुस से तिजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आबनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासरा खत्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में आला सतही बैन वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनोवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खत्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरान के लिए मखसूस लाइजन अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा पेट्रोलियम और कुदरती गैस कीमिया और खाद की वजारत भारतीय बहरिया जहाजरानी के डायरेक्टरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाक़ भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था बैन अलाक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जेरे कब्जा पूरे इलाके में ये मुजाहरे खित्ते में पाकिस्तान के दीरीना कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वैश्याना कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें दसियों शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ खित्ते में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू नाफिज है। नीज मवासलात का सिलसिला पूरी तरह मुनक़ता हो गया है। अखिलती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेद्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
3: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा। वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया, समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इंकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक्वाम मुत्तहदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई असलाहत का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैलोकमी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान, अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपीय यूनियन का बयान,

0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। बर्तानिया, भारत बर्तानिया जामे इक्तसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है, उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है, कुछ ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
3: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2-3 बार नहलाएं, 3-4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
2: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर जिले के कासिल गांव से राज्य के नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। बीपीएससी की एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब दो चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अनापत्ति संसूचित की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की ओर से प्रचार और जनसंपर्क में आई तेजी। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी।

0: मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड स्थित कासिल गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। यहां संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जल्द ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए यहां 3,600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। स्थायी या परिसर बनने तक ये महाविद्यालय संबंधित प्रखंडों के चयनित प्लस टू विद्यालयों या अन्य राजकीय भवनों में संचालित होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में से 211 प्रखंडों में अब तक कोई भी अंगीभूत या संबद्ध डिग्री महाविद्यालय नहीं था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब दो चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की प्रक्रिया और स्वरूप तय करने के लिए आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। आयोग संबंधित विभागों से परामर्श लेकर परीक्षाओं को दो चरणों में आयोजित कर सकता है। इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रणाली लागू हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। इधर प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के नामांकन वैध पाए जाने के बाद समर्थकों में उत्साह है। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, विधान पार्षद पवन सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इधर उपचुनाव के लिए एनडीए और राजद समेत अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मजदूरी मद में 13 अरब 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए इस मद में 9 अरब 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध करा दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 60% जबकि राज्य की 40% की हिस्सेदारी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय

0: चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम एन सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी बराले की पीठ ने मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री कुमार ने अभ्यर्थियों से लोक सेवक के रूप में संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने की अपील की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
2: दिनांक 15 जुलाई, राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल रात 11 बजे तक 2,21,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है।
3: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दी गई है। इधर जिला पदाधिकारी तरुणजोत सिंह ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में लाल निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि जिले में नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। इससे कई स्थानों पर कटाव की समस्या शुरू हो गई है। नदी का जलस्तर डुब्बा घाट में लाल निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंधों के अंदर पानी फैलने लगा है। वहीं कमला बलान नदी झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 113 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड अंतर्गत सहूरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपोखर और भेड़हा गांव का सड़क संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खरीफ मौसम के तहत जिन जिलों में बुआई और धान रोपनी की गति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण कर रोपनी कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इधर अल नीनो के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR पटना ने किसानों के लिए परामर्श जारी किया।

0: इसके अनुसार किसानों को कम आयु वाली स्वर्ण श्रेया, स्वर्ण उन्नत और प्रभात समेत सूखा सहने वाले धान बीजों की खेती करनी चाहिए। वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर में इस वर्ष नवंबर दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम का आयोजन किया जाएगा। पटना स्थित सचिवालय कक्ष में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में शिकायत आने के बाद वैशाली जिले के गुरौल अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया है। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने डांस ग्रुप में शामिल तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त करा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत ये सफलता मिली है। उन्होंने लोगों से बाल श्रम, मानव तस्करी और शोषण के मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या स्थानीय प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया हनुमानगंज के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार तीन महिला मजदूरों की मौत हो गई। पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस ने एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। पटना पूर्वी की पुलिस अधीक्षक शैलजा ने बताया कि वैन चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सहयोग कार्यक्रम में सीएम ने खुद 100 समस्याएं सुलझाई। दैनिक जागरण ने लिखा है, हॉर्मुज में वाणिज्य जहाज पर ईरानी हमले में गोपालगंज के युवक की मौत। प्रभात खबर ने फीफा विश्व कप से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिखा है, स्पेन 16 साल बाद फाइनल में, फ्रांस का सपना टूटा। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, अदालतों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे 7 दिन करेगा सुनवाई। राष्ट्रीय सागर लिखता है, सोनम वांगचुक 17 दिनों से अनशन पर, कई प्रमुख हस्तियों ने अनशन खत्म करने की अपील की। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के सभी 36 सदर अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगी इमरजेंसी सेवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर जिले के कासिल गांव से राज्य के नव स्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। बीपीएससी की एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब 2 चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अनापत्ति संसूचित की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की ओर से प्रचार और जनसंपर्क में आई तेजी। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कृपा नानक शाह गुरु सब शीश नवा उरदास करो और हरदम बोलो वाहे गुरु। ये बंद नजीर की नज्म नानक शाह गुरु से लिया गया था। और अब इनकी एक नज्म कृष्ण जी से एक बंद मुलाजा हूँ कि फिर आया वहाँ एक वक्त जब आए गर्भ में मनमोहन गोपाल मनोहर मुरलीधर सेक्शन किशोरन केवल मल घनश्याम मुरारी बनवारी गर्धारी सुंदर श्याम बरन प्रभु नाथ बिहारी कान लगा सुखदाई जग के दुख भंजन जब साथ प्रकट होने की वाह मुकुट धरिया की अब आगे बात जन्म की है जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। और इसी के बाद हजरत सलीम चिश्ती की बारगाह में जब वो नज्म लेकर हाजिर होते हैं तो उनका अंदाज कुछ यूं है। बस एक बंद आलम है सब मुअत्तर तेरे कर्म की बू से हुरमत है दोस्तों की हजरत तुम्हारे रू से ये चाहता हूँ अब मैं सौ दिल की आरजू से रखियो नजीर को तुम दो जग में आबरू से ऐ मोजिदे हरासा हजरत सलीम चिश्ती। उन्हें आगरे की मिट्टी से इस कदर प्यार था कि उनकी तैराकी का जो मंजर था उस इलाके का उस पर भी वो एक नज्म लिखते हैं आगरे की तैराकी। इससे सिर्फ दो बंद देखें कि जमुना की पाट गोया सहने चमन है हारे पैरा के इसमें पैरे जैसे के चांद तारे मुंह चांद के से टुकड़े तन गोरे गोरे प्यारे परियों से भर रहे हैं मंझधार और किनारे कुछ वार पैरते हैं कुछ पार पैरते हैं उस आगरे में क्या क्या ऐ यार पैरते हैं। और दूसरा बंद देखें कि कितने खड़े हैं पैरे अपना दुखा के सीना सीना चमक रहा है हीरे का जो नगीना आधे बदन पे पानी आधे पे है पसीना सरों का ये चला है गोया के एक करीना दामन कमर पे बांधे दस्तार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या ऐ यार पैरते हैं। इस तरह उनकी कई नज़में जो मुख्तलिफ त्योहारों होली दिवाली ईद से मुतालिक हैं वहां भी हिंदुस्तानी सकाफत के बेशुमार ठाठे मारते असरात दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी के रगो पे में पूरी हिंदुस्तानी सकाफत पैवस्त थी जिसके बयान में इनका पूरा शेरी सरमाया तो नहीं लेकिन निस्फ से जायद हिस्सा मबनी है गजलिया अशार को छोड़कर। बहुत शुक्रिया
1: सामीन आप सुन रहे थे मकाला मौजू था नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में हिंदुस्तानी सकाफत की झलक। मकाला निगार थे जनाब डॉक्टर हामिद अली खान। सामीन अब चलते हैं शेर व शायरी की जानिब और कलाम शायर के तहत आज कलाम पेश कर रहे हैं जनाब मोहम्मद फरीद अनवर खान आपकी समातों के हवाले।

ये आवाज़ थी किशोर कुमार की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म जानी दुश्मन से। बर्मा मलिक के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की फिल्म पत्थर के सनम में। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत।

0: यह अवस्थी लता मंगेशकर की फिल्म राम तेरी गंगा मेले में। आइए अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

या वजह थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म आन मिलो सजना में इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। ये पहला गीत बोधनारायण सिंह की आवाज़ में

अभी आप बोध नारायण सिंह के स्वामी देवी गीत सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं कल्याणी कुमारी के स्वर में ये झूमर गीत।

अभी आप कल्याणी कुमारी, इसे फिर से सुन लें। अभी आप कुमारी कल्याणी के स्वर में यह झूमर सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं विभा सिन्हा के स्वर में ये कजरी गीत।

अभी आप विभा सिन्हा के स्वर में ये कजरी सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं नीलम झा का गाया ये बटगमनी गीत।

अभी आप कुमकुम झा के स्वर में ये बटगमनी सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पार्वती मिश्रा के स्वर में ये नचारी।

पार्वती मिश्रा के गाए इस नचारी के साथ ही लोक गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। आप इस समय सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचाते हैं शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं विश्वमोहन भट्ट। लीजिए इनसे सुनिए मोहन बीना में राग देश। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे हैं मिस विश्वमोहन भट्ट को। आइए सुनते हैं अब राग सारंग।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे राग सारंग और राग देश, विलंबित रचना, तीन ताल में निबद्ध था। गायक कलाकार थे विश्वमोहन भट्ट। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की

0: बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
1: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे।

0: ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
0: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी,
5: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे

0: से बनती है?
1: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
0: अच्छा नाना जी।
1: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
0: अच्छा।
1: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
0: अब समझ में आया नाना जी। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
1: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
1: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
0: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
0: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौढ़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
0: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में बड़े वकील थे।

0: वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?

0: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
1: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
0: नहीं।
1: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
0: माँ,
2: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
3: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
4: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
3: क्या सोच रहे हो तुम?
4: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
3: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
4: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
3: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
4: प्रणाम महात्मन।
5: जीते रहो पुत्र।
4: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
5: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
4: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
5: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
2: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
4: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
2: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।

ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आप इस समय सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:01:15 हो चुके हैं। अब ये घड़ी है नए फिल्मी गीतों का, तो आनंद उठाइए अभी से हमारे साथ 12:30 तक नए फिल्मी गीतों का। शुरुआत हम कर रहे हैं बैड बॉय फिल्म के इस गीत के साथ।

फिल्म बैड बॉय में अभी आप सुन रहे थे शान को। गीत के बोल शब्बीर अहमद के थे और संगीत हिमेश रेशमिया का। आइए सुनते हैं, इसी फिल्म में पायल देव, राज बर्मन और आकृति मेहरा को

गदर टू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। गीत के बोल सईद कादरी के थे और संगीत था मिथुन का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं नए फिल्मी गीतों का। अब वो गीत सुनिए जिसे गाया है राज बर्मन, पायल देव और आकृति मेहरा ने। फिल्म का नाम है बैड बॉय।

ये फिल्म थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और साथियों की आवाज़ों में इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल इरशाद कामिल के थे और संगीत विशाल मिश्रा का ही था। लीजिए सुनिए इस फिल्म का एक और गीत, निकिता गांधी और विशाल मिश्रा की आवाज़ों में।

लीजिए अब सुनिए पलक मुच्छल और कमाल खान को। गीत के बोल कुमार के हैं, संगीत तो सुखबीर का, फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान। तो लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

पलक मुच्छल और कमाल खान के गाए इस गीत के साथ नई फिल्मी गीतों का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। अगर नए गीतों का आनंद फिर से आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, और वो शाम 5:30 का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी समय हो रहा है कार्यक्रम, बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली सब श्रोता सखी को आरती का प्यार भरा नमस्कार। सखी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने चर्चा के जरिए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, साथ ही मनोरंजन की दुनिया में लेकर के चलेंगे और

सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गाने, और हर दिन की तरह आज भी आप सुनेंगे वार्ता हमारी रेडियो सखी विजेता सिन्हा से। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। विश्व युवा कौशल दिवस पर हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक काम और अपना खुद का काम शुरू करने के लिए हुनर होना चाहिए, यानी कि कौशल होना चाहिए। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ये दिन युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करता है। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे युवा बिना डिग्री के भी अपने हुनर से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बदलते समय के साथ युवाओं को डिजिटल, कंप्यूटर और AI जैसे नए कौशल सीखने पर भी जोर दिया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला उद्यमी बनना है। इसलिए युवाओं को ऐसे तकनीकी और व्यवसाय कौशल सीखना है जिससे बदलते समय के साथ आसानी से नौकरी पा सके। आज की तेजी से बदलती दुनिया में कौशल विकास का अत्यधिक महत्व है। ये आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले के साथ साथ बेरोजगारी कम करने और व्यक्तिगत या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक है। भारत में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रमुख कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को अत्यधिक तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन योजना वगैरह वगैरह योजनाएँ चलाई जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि बेहतर नौकरी और पैसा हर कोई कमाना चाहता है, तो अच्छी डिग्री के साथ साथ आपके पास काम करने का कौशल होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये सब गुण अगर आप में है तो आप आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखें, जब आप किसी काम में माहिर हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी काम को बिना डरे और आसानी से कर सकते हैं। कौशल क्या है? कौशल एक बीज की तरह है, जैसे बीज बड़ा होकर फल देता है, वैसे ही कौशल आपको जीवन में सफलता और खुशी देता है। तो बहनों, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दी हूँ। इसके तहत युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण, साथ ही प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए विशेष कुशल युवा कार्यक्रम चलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है 15 से 28 वर्ष के बीच के बेरोजगारी या फिर बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना युवाओं को उद्योग में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन शिक्षण संस्थान, ये योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे युवाओं को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए ये है। PM इंटर्नशिप स्कीम, ये देश की शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर और अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है। तो बहनों, बातें भी आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हरियाली बिखेर देती है। आसमान में छाए काले बादल मौसम को सुहाना बना देती है। ऐसे में हर कोई इस मौसम का आनंद लेना चाहता है और खासकर तो चटपटे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मन उतावला हो जाता है। पर बहनों, इस मौसम में खान पान को लेकर सतर्क रहने की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात, किसी भी मौसम में अधिक तेल मसालों का सेवन या गरिष्ठ भोजन अच्छा नहीं होता, वो सीधा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो बहनों, इस मौसम में खान पान को लेकर सतर्क रहने की बहुत अधिक जरूरत होती है। श्रोताओं, जब भी भोजन करें तो ताज़ा करें, बासी भोजन करने से बचें, वरना इस मौसम में गैस, अपच और पेट खराब भी हो सकता है, इसलिए बासी भोजन करने से बचें। श्रोताओं, इस मौसम में पानी को लेकर भी सतर्क रहें, पानी जब भी पिएं तो उबाल कर और छान कर ही पिएं, वरना हमारे शरीर में वो कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं जो हमें अपनी आँखों से भी दिखाई नहीं देते और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए पानी को उबालकर और छानकर ठंडा कर किसी बोतल में भरकर रख लें और उसे ही पिएं। फ्रिज के पानी को नज़रअंदाज करें, क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमें बरसात के मौसम में सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडा पानी पीने की जगह उबाला हुआ पानी पिएं। श्रोताओं, इस मौसम में अदरक वाली चाय अवश्य पिएं। तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, अदरक ये सब डालकर काढ़ा बना लें और उसे अवश्य पिएं, जिससे कि इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। बहनों, हमने पहले भी कहा है कि इस मौसम में खान पान को लेकर सतर्क रहने की अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमें चटपटे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा होती है। तो बहनों, हम ये नहीं कहते कि आप चाट पकौड़े ना खाएँ, अवश्य खाएं, पर कभी कभी और वो भी थोड़ा सा घर का बना हुआ। बाहर के खाने की चीज़ों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि खुले में मिलने वाली खाने की चीज़ें स्वच्छ नहीं होती, उन पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, या तो वो बासी हो सकता है जिसे खाकर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी बारिश के दिनों में चटपटे व्यंजन का स्वाद लेना चाहें तो इसे घर पर बनाकर ही खाएं, क्योंकि बाहर के खानों में तेल मसालों की कोई सीमा नहीं होती। यदि आप अपने स्वाद के अनुसार घर में बनाकर खाएंगी तो आपको स्वाद भी अच्छा मिलेगा और आपका सेहत भी दुरुस्त रहेगा। तो चाट पकौड़े अवश्य खाएं, पर घर का बना हुआ ही। तो श्रोताओं, यदि इस मौसम का आनंद आप खुलकर लेना चाहती हैं तो अभी हमने जितनी भी बातें की उस पर अमल अवश्य करें। सदैव याद रखें, छोटी छोटी सावधानियां बरतने से हम डॉक्टर के चक्कर में पड़ने से बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और बारिश के मौसम का आनंद खुशी खुशी ले सकते हैं। तो अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।

0: अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी विजेता सिन्हा। तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।
1: नमस्कार, मैं विजेता आज आपसे बात करूंगी बरसात के मौसम में खान पान के संबंध में। बहनों, बरसात का मौसम भला किसे अच्छा नहीं लगता। बारिश की बूंदें पूरी धरती पर

बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ताकार थी विजेता सिन्हा। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। हर दिन कुछ खास में आज मैं आपके लिए बनाऊंगी इस गर्मी से राहत देने वाला रायता। बहनों, रायता हमेशा से भी भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहा है। ये शरीर को भीतर से ठंडा रखने के कारण खास तौर से इस मौसम में इसकी अहमियत हमें ज़्यादा मालूम होती है जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जी हाँ, चलिए बहनों, आज हम आपके लिए लौकी रायता बनाने जा रही हूँ। वो भी कितने लोगों के लिए, आपको बता देती हूँ, 6 लोगों के लिए। आप चाहे तो 4 या 5, या फिर आपके घर में जितने परिवार हैं आप उसी अनुसार से बना सकती हैं। सामग्री है छोटी लौकी, 1 दही 2 कप, नमक स्वाद अनुसार। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकती हैं अगर आप चाहती हैं तो। कटी हुई हरी मिर्च 2, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती थोड़ी सी। अब हमें तड़का के लिए तेल चाहिए, तेल 2 चम्मच, बारीक लहसुन 2 कलियाँ, सूखी मिर्च 4, जीरा 1/2 चम्मच, करी पत्ता 10 या 15। बहनों, इसका विधि है लौकी को अच्छी तरह से छीलकर उसको कद्दूकस कर ले, फिर इसे हल्का उबाल ले। ठंडा होने के बाद इसका पानी निचोड़ दे। उसके बाद एक बड़े बर्तन में दही लेकर उसे फेंट ले और नमक डालकर मिलाए। अब इसमें मिर्च, धनिया पत्ती और लौकी डालकर अच्छी तरह से मिलाए। इतना ही नहीं, एक छोटे पैन में तेल गरम करें, इसमें लहसुन और लाल मिर्च डालें। मध्यम आंच पर लहसुन के सुनहरा होने तक पकाए। अब इसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो गैस ऑफ करके तड़का में करी पत्ता डालें। अब तैयार तड़के को रायता में मिलाएं, फिर रायता सर्व करें। और आप इसी तरह से खीरे का भी रायता बना सकती हैं या फिर कद्दू का जूस भी बना सकती हैं। तो बहनों, आपको बता देती हूँ कि सुबह खाली पेट लौकी के जूस का सेवन करने से पेट साफ रहता है और एसिडिटी कम होती है, साथ ही कब्ज की समस्या दूर होती है। जी हाँ, ये ऐसी सब्जी है जो हर मौसम में पाई जाती है। इसका सेवन लोग सब्जी, हलवा, रायता और जूस के रूप में करते हैं। ये इस मौसम में ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ये ठंडी होती है मगर पचने में आसान होती है और शरीर को एलर्जी देती है। बहनों, ये सब्जी जो है वो आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ को संतुलित करने वाले हैं। औषधीय गुणों से ये भरपूर है। आयरन, कैल्शियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। आयुर्वेद में लौकी के जूस को दिल के रोग और मोटापा, पाचन जैसे समस्याएं इससे दूर होती है। ये सब्जी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। तो बहनों, आपको पता है लौकी के जूस में नेचुरल शुगर होती है जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। इतना ही नहीं, इसमें पोटेशियम मौजूद होता है जो बॉडी में सोडियम के स्तर को संतुलित रखकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को बीपी हाई रहता है, ये जूस वो हर दिन सुबह लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं और पूरा दिन बीपी नॉर्मल

मल कर सकते हैं। ये जूस दिल के रोगों से बचाव करने के साथ साथ हेल्दी रखने में भी बेहद असरदार साबित होता है। इससे वजन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसका जूस आप रोज़ाना पिए तो आपके शरीर के लिए बेहतर फायदेमंद पहुंचा सकता है। बहनों, अभी मौसम बरसात का चल रहा है। बरसात के मौसम में प्राकृतिक अपनी सुंदरता तो बिखेरती ही है। सुहानी हवा और महकता मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में हवा और हवा में नमी रहती है, साथ ही रिमझिम बारिश में भीगने से खुद को हमेशा बचाए रखना भी संभव नहीं होता है। यानी कि ये मौसम हरे भरे नज़ारे के अलावा बीमारियां भी अपने साथ लेकर के आता है। बहनों, बारिश के मौसम में भीगने का प्रयास कम करें। इस मौसम में कब बारिश हो जाए किसी को पता ही नहीं होता है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ छाता और रेनकोट जैसी चीज़ें को अपने साथ लेकर के निकले। इस मौसम में जब भी धूप निकले बिस्तर को धूप में ज़रूर सुखाए। इससे नमी के कारण उसमें पैदा होने वाले कीटाणु मर जाएंगे और बिस्तर से भी बदबू निकल जाएगी। बहनों, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आप बारिश में भींग जाते हैं या फिर कहीं बाहर निकलते हैं तो इसका भी ध्यान रखें कि बारिश में भींगने से बचें। अगर भींग भी जाते हैं तो तुरंत गीले कपड़े को उतार कर और सूखे कपड़े पहने अच्छी तरह से देह को पोछे, शरीर को अच्छी तरह से पोछे और घर आकर के तुलसी लौंग और काली मिर्च डालकर चाय बनाकर जरूर पिए, अन्यथा सर्दी खांसी जुकाम होने की आशंका बनी रहती है। तो बहनों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें पत्र के माध्यम से भी लिख करके भेज सकती है। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। तो बहनों, इसी के साथ दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

यह था बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली के इंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और
2: सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज

0: हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि ये निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि ये समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ये समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

कार्यक्रम विवरण। इसके तहत श्रोताओं हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। देशभक्ति गीत, हम

अब तक पहुंचाएंगे दिन में 1:10 पर, अब से थोड़ी ही देर बाद में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दिन में 1:15 से।

दिन के 2 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से और इलाकाई खबरें 2:05 पर। आप सुनेंगे रोजगार सूचना। दोपहर समाचार 2:15 पर आप प्रतिदिन सुना करते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।

दिन के 2:30 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का, और अपराह्न 3 बजे सुनिएगा कुछ भजन सुगम संगीत में।

ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवावाणी कार्यक्रम के साथ। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। शाम 6:25 पर मैथिली संवाद और शाम 6:30 कार्यक्रम गाम घर। आज बुधवार है, आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। इसके तहत प्रायोजित कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे। पारा मेडिकल है पारस।

सिंगरहार ये मैथिली कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर, समाचार संध्या रात 8:45। उर्दू में खबरें रात 9:15 पर और चर्चा का विषय ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे रात 9:30। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा लोक माधुरी रात 10:00। और गीतों के रंग ये कार्यक्रम रात 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। ये आकाशवाणी दरभंगा है, लीजिए सुनिए अब देशभक्ति गीत।

ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में देश प्रेम फिल्म से लिया गया था।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15:30 हो चुके हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शुरुआत हम कर रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवणकर।

रंग फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं फिल्म संगीत का। जी हाँ श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए दिन के 2 बजे तक और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। तो लीजिए अगला गीत जो हम अब तक पहुंचाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म साजन से, है अलका याग्निक की आवाज़ में।

साजन फिल्म का ये गीत अभी हम आप तक पहुंचा रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। लीजिए सुनिए शब्बीर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। एस एस बिहारी के लिखे ये गीत हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो लीजिए ये रहा अगला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर।

SS बिहारी के लिखे ये गीत हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो लीजिए, ये रहा अगला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 से।

उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे डर फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी दरभंगा। लीजिए सुनिए अगला गीत अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में, जिसे हमने लिया है फिल्म इतिहास से।

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद इलाकाई खबरें हमारे पटना केंद्र से।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नई डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। जाने माने शिक्षक और जन सुराज नेता डॉक्टर के सी सिन्हा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सराबकी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। डॉक्टर सिन्हा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहीं जन सुराज नेता बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले के महाराजगंज में सबसे

0: अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्णिया जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 2,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी अभियंताओं की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। विभाग ने तटबंधों और संवेदनशील स्थलों पर 2400 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कोरोल अंचल के राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान कार्य में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और अनावश्यक विलंब पाए जाने के बाद की गई है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्टल और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। बकाया मजदूरी और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हड़ताली कर्मियों ने नियोजन भवन स्थित श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उप श्रम आयुक्त पटना प्रमंडल को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए बकाया वेतन के भुगतान, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन कराने तथा अस्थायी कार्यों में आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत के 211 ब्लॉकों में नए कायम शुदा डिग्री कॉलेजों में आज से तदरीसी अमल शुरू हो गया। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने भागलपुर जिला के कासिल गांव में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान इन कॉलेजों में तालीमी सेशन का आगाज किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और महकमा हायर एजुकेशन के वजीर संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक नए डिग्री कॉलेजों में पहले सेशन में 6 सब्जेक्टों अंग्रेजी, हिंदी, तवारीख, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की पढ़ाई होगी। इन कॉलेजों में अब तक 60,000 से ज्यादा तलबा का दाखिला हुआ है। नए कायम शुदा कॉलेजों में मुतल्लिका यूनिवर्सिटियों की जानिब से असातिज़ा की तकर्री की गई है। जल्द ही बिहार रियासती यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जरिए 3,600 से जायद असिस्टेंट प्रोफेसरों की तकर्री की जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में रियासती काबीना की आज पटना में मीटिंग होगी। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक कई अहम तजावीज को मंजूरी मिलने का इम्कान है। मारूफ टीचर और जनस्वराज के लीडर डॉक्टर केसी सिन्हा ने बीजेपी की रुकनियत इख्तियार कर ली है। पटना में मुनक़दा एक प्रोग्राम में रियासती सदर संजय सरोगी ने उन्हें पार्टी की इब्तदाई रुकनियत दिलाई। डॉक्टर सिन्हा ने गुज़श्ता असम्बली इंतखाब में जनस्वराज के टिकट पर कुम्हरार असम्बली हलका से इंतखाब लड़ा था।

0: वहीं जन स्वराज लीडर बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह ने भी बीजेपी की रुकनियत अख्तियार की है। मॉनसून की सरगर्मी से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मगरबी हिस्सों में काफ़ी बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात से मौसूल इत्तला के मुताबिक सीवान जिला के महाराजगंज में सबसे ज़्यादा 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज पूर्णिया जिला के कुछ मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। रियासत के दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। नेपाल के आबी जमाव वाले इलाके में हो रही भारी बारिश के सबब गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के की आबी सतह में लगातार इजाफा की सूरत हाल बनी हुई है। बेतिया से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सूरत हाल को देखते हुए महकमा आबी वसाइल ने अलर्ट जारी करते हुए सभी इंजीनियरों की छुट्टियां फौरी असर से मनसूख कर दी हैं। महकमा ने पुश्तों और हसास मकामात पर 24 घंटे निगरानी करने की हिदायत दी है। इस दौरान जिला इंतजामिया ने गंडक नदी के साहली इलाकों में रहने वाले लोगों से मोहतात रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे आबाद लोगों को हिफाजती और ऊंचे मकामात पर जाने की सलाह दी है। वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने गुरौल सर्किल के कोऑपरेटिव के मुलाजिम राजू कुमार को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई सहयोग पोर्टल पर मौसूला शिकायत के जायजा के दौरान काम में लापरवाही, बेतवज्जही और गैर जरूरी ताखिर पाए जाने के बाद की गई है। खगड़िया जिला के बेलदौर थाना इलाके के तहत कचरा भवन के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्तौल और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक जरायम पेशा शख्स पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। जख्मी जरायम पेशा शख्स का मुकामी अस्पताल में इलाज जारी है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। बकाया मजदूरी और कम से कम तनख्वाह के मुतालबे के पेश नज़र हड़ताली मुलाजमीन ने नियोजन भवन वाक़े लेबर ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन ने डिप्टी लेबर कमिश्नर पटना डिवीज़न को 5 निकाती मुतालबात के मकतूब पेश करते हुए बकाया तनख्वाह की अदायगी, सर्विस सिक्योरिटी को यकीनी बनाने, कम से कम मजदूरी जाब्ता की तामील कराने और मकामी कामों में आउटसोर्स निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर।

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 2026, कुल पदों की संख्या है 6557, आवेदन 30 जून 2026 से ही शुरू है, आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए रेलवे के वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड बैंक ऑफ इंडिया, पदों की संख्या है 789, आवेदन

30 जून 2026 से ही शुरू है और आवेदन की अंतिम तिथि है 20/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा अभ्यर्थियों के लिए है 45 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है bankofindia.bank.in। लेखा परीक्षक और सहायक 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित है 14/7/2026 से। आवेदन की अंतिम तिथि है 3/8/2026। इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए लेखा परीक्षक और सहायक के ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। JKSSB 2026 कुल पदों की संख्या है 130। आवेदन 22/6/2026 से ही शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि है 21/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। अधिकतम उम्र सीमा है 40 वर्ष और इस जानकारी के लिए JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट .nic.in पर जाकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया, सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय

0: पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।

0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर

0: जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र में, और आनंद उठाइए इस समय फिल्म संगीत का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

वाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। फिल्में थी दिल तो पागल है, दुकान, दामिनी, जुनून, दाग द फायर। गायक कलाकार थे उदित नारायण, लता मंगेशकर, अभिजीत, अलका याग्निक, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

सुनिए आकाशवाणी दरभंगा की अगली प्रस्तुति सुगम संगीत। पहले हम आप तक पहुंचाते हैं अनुपमा मिश्रा का गाया ये भजन।

साथ सुगम संगीत अब यही समाप्त हुआ। कलाकार थी अनुपमा मिश्र और शिप्रा। तीन बजकर 20 मिनट हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: सुनाली, बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में, सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर उस वक्त भी उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी।

0: है।
1: बिल्कुल, और अर्ली सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है, और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं,
0: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है, और एक उत्कृष्ट अर्नी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक, और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और जामिति डिजाइन होती है, और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
1: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अर्नी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली, और अर्नी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अर्नी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है।
0: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है, और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्नी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें। अर्नी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सोनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अर्नी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
0: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अर्नी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
1: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है,
0: और नहीं है तो खरीद ले।
1: और फिलहाल ये सुने, गीत
0: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी है ना,
1: कि जब हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना। साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती है जब सखियां मिलती है,
1: यानी ये जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से
1: हमारी हिम्मत बढ़ जाती है,
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सके। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं, तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहाँ विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहाँ केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें हिम्मत उठानी, हिम्मत दिखानी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए, असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए।
0: ये तो बहुत सही बात आपने कही है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए

0: हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए। गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना सपनों को सच करने का यही अफसाना है। जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले। हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो। ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं। हम तो हिम्मत हार गए या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति की वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
0: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आप को खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल। इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सुनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं है तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे।
1: उनके आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है।

0: पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है। तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं। तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी की, ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती हो। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
1: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है, त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार, खुशी गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
1: एक साथी लिखते हैं, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके, किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी, हाँ। तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये छोटा सा बर्तन।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैनजी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं, फ्लैट और सोसाइटी में ये दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था, और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी, या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो 3रे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात,
1: बहुत सही बात की, और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर

0: अक्से जाकर बैठते हैं, अक्से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं, पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर।
1: जी

0: तो भाई देखो सुनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले लेते
1: भाई, बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई खाने का आनंद बढ़ता
0: है ना। चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक डेढ़ कप या दो कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है एक छोटा प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाएं। एक बड़े कटोरे में गर्म या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गर्म करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना

0: सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, इन्हें दाने को बारीक पीस लिया। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, एक दो चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं, और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं। तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छी।
1: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जियों को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो यानी अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गर्म गर्म सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी,
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि

0: हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और श्रोताओं को कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव।
1: क्या?
2: और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा योगदान।
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी, और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है। और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहां से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार

0: भी मिला आपको?
1: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपए का है वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था यूएनओ का, तो नॉर्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
0: जी।
1: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
0: जी हाँ।
1: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे, और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
0: जल ही जीवन है,
1: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
0: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद
1: जी,
0: इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहां से आपके पास आइडिया आया,
1: इसमें
0: क्या रिसर्च किया आपने?
1: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है, तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ।
0: जी जी।
1: हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
1: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में है
0: जी।
1: शरद जोशी जी बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे,
0: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता था।
1: हाँ। और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधु
0: जी।
1: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी वो भी मध्य प्रदेश के थे
0: जी जी जी।
1: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड ये तीन स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज अंकुरित होते रहे
0: जी।
1: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
0: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
1: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो

0: उस वजह से, जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे, उनके व्यंग दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षण शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिख कर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
0: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है।
1: जी जी,
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को,
0: कोई हमने एक पात्र चयन किया। जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी जी,
0: कई बार ये स्थितियां होती हैं।
1: तो हम किंग कर्तव्य विमोढ़ नहीं हो सकते हैं। हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का
0: गाना, अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग

0: में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे
1: जी हाँ।
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो?
1: ममता जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं इतना लकी नहीं था।
0: विरोधाभास रहा
1: मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या?
1: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी। तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चार्ट डाले थे।
0: तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता था, दौर था पढ़ाई का,
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता,
0: कौन पहले पढ़ेगा।
1: तो ये जमाना था।
0: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान तो इंतजार होता था
1: धर्मयोग,
0: कौन पहले पढ़ेगा
1: धर्मयोग
0: जी, जी।
1: और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए
0: जी।
1: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता।
0: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में
1: रुचि में था। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल
0: थे
1: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहां से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से बी किया। फिर उसके बाद बी करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCTA भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में। तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
0: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है। महानगरों को छोड़ दे, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया, कोई ऐसी घटना याद आती है?
1: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा
0: थी,
1: खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थिति जो ऊर्जा है उसको, पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि तांबे का कोई जो हमने फेराडे ला पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ

0: तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहां की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है। अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर,
1: कौन
0: जरूर।
1: सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर,
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो ये
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात तो, है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ये जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है?
1: ममता जी,
0: तो
1: बहुत
0: ऐसी कोई बात
1: अच्छा
0: है तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन

0: संगठन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से, उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती रहे, ये उनकी, उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों, क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई। तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
1: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
0: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था तब हम घर की पूजा करते।
1: जी जी।
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, वे सब पूरा, जिसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है तब कहीं जा करके।
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं, तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये
1: अनाड़ी फिल्म का गाना,
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959, 28 जुलाई 59।
1: तो सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए।
1: जरूर,
0: लिखते समय
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो

0: अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
1: जी,
0: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं
1: जी,
0: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
1: जी।
0: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
1: जी, जी।
0: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी।
0: जी, अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिये में लपेट दिया गया और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी,

0: और एक लंगोटी। जब आज उसके मेहनत कश हाथों ने सीली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर, अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
1: क्या बात है।
0: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
1: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
0: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो वो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
1: जी जी।
0: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूं मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखी छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चूं जैसा कुछ लिख गया। आगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं आगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चूं। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चूं में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। आगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। आगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती है।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं।
0: जी जी।
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी।
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से

0: जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं
1: जी जी,
0: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है
1: जी।
0: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के यथार्थ नायक जो जिस ढंग का जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
1: तो आपको क्या लगता है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
0: जी,
1: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
0: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा टिकट लगा लिफाफा रखना होगा
1: जी जी।
0: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
1: क्या बात है,
0: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी है रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
1: से इंतजार होता
0: जी हाँ, ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया, और स्व संपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए, मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी,
1: जी,
0: जब हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, अब सब कुछ टर्न हो गया
1: जी हाँ, एक समय था एक समय बहुत जी हाँ,
0: तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं
1: जी जी।
0: संपादन का एक अलग महत्व होता है, संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
1: एक पुल का काम करता
0: है, काम करता
1: कि
0: है,
1: अगर पुल अच्छा है मजबूत है तो निश्चित रूप से
0: नहीं उससे परिष्कार भी
1: पार जा सकते हैं,
0: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है,
1: तो क्या प्रतिक्रिया देती है, अच्छी
0: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित
1: जी।
0: तो जो कुछ हम जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहे ना रहे साहित्य रहेगा
1: जी, बिल्कुल, किताब रहेगी,
0: किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए, अब उनके मम्मी पापा वहां क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले, और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी,
1: एक उनकी बाकायदा दुनिया है और एक बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
0: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं
1: जी जी।
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था। आज आप भी

0: लेखिका हैं, आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं
1: जी। प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए हैं, आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: फायदे नुकसान?
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है
1: जी।
0: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं अभी। मैं
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं?
0: जी हाँ,
1: नाटक भी था
0: जी।
1: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ, सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है, मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है
1: जी। तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक?
0: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती
1: है, सहायिकाएं होती हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
0: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती, तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य एकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटे तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटे तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना, भाव काव्य के मंथन करते घर लौटे तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो ले

0: कर घर लौटें तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है।
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटें तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम। मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम। पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट
0: एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
1: लगता है। वाह।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

युवा साथियों नमस्कार। आकाशवाणी के लोकप्रिय युवा कार्यक्रम युवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा जो कार्यक्रम है युवाणी का, ये लोक गीतों पर ही आधारित होता है। और हम सब जानते हैं देश की सांस्कृतिक विरासत में लोक गीतों का एक अनमोल स्थान है। ये गीत हमारी मिट्टी की महक, लोक जीवन की सादगी, रीति रिवाजों, उत्सवों, प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं को बड़े ही सहज और मधुर स्वर में अभिव्यक्त करते हैं। लोकगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान के सशक्त वाहक भी हैं। तो आइए आज युववाणी की शुरुआत करते हैं अरविंद कुमार झा एवं ओम प्रकाश सिंह के गाए इस मधुर माता के भजन के साथ।

युवा साथियों, हम आशा करते हैं आपको यह गीत जरूर अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, युववाणी में हम आपका मनोरंजन लोकगीतों से तो करते ही हैं, साथ ही किसी खास खास टॉपिक पे आपसे बात भी करते हैं, आपके विचारों अपने विचारों को आपसे साझा भी करते हैं। आज शायद आपको पता होगा, आज 15 जुलाई को हम लोग विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। जी हाँ, इस दिन के अवसर पर हम बात करते हैं उस शक्ति की जो हर युवा के सपनों को नई उड़ान देती है, वो है कौशल, स्किल। आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच, संवाद कौशल और नए युग की तकनीकों को सीखने की क्षमता भी सफलता की कुंजी बन चुकी है। और आज लोग नौकरी पाने की अपेक्षा नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं। और एक बात और आपको पता होगा, ये जो देश है अपना भारत, विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। यदि हमारे युवा अपने कौशल को निरंतर निखारते रहे तो वे न केवल अपने लिए बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बना सकते हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। चर्चा पे हम पुनः आएंगे, आपका मनोरंजन भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं इस बरसात में ये कजरी विभा सिन्हा के स्वर में।

श्रोताओं, विश्व युवा कौशल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आज के समय में सफलता केवल शैक्षणिक डिग्री से नहीं बल्कि व्यावहारिक कौशल, नवाचार और सीखने की निरंतर इच्छा से भी तय होती है। तकनीक के तेजी से बदलते दौर में युवाओं के सामने अनेक नए अवसर उभर रहे हैं, जिसका लाभ उठाने के लिए सही कौशल विकसित करना अति आवश्यक है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम AI भी कहते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, नवीनीकरण ऊर्जा, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप विकास और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में कुशल युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। आप देखिए कहाँ आपको अपेक्षा होप है, स्कोप है जॉब का, इन्हीं क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों का अभी हमने जिक्र किया है आपके साथ। वहीं कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, हर जगह आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंट्री हो चुकी है इसकी, और ये बिल्कुल आसान कर दिया है। अगर इस पेशे में कोई हैं हमारे आपके बीच से, तो आप उनसे बात करके समझ सकते हैं कि इन तकनीकों को अपनाकर उनका जीवन या शैली या उनका कार्यक्षेत्र या उनका प्रोफेशन कितना आसान हो गया है। तो बार बार हम लोग चर्चा भी करते हैं।

कि कौशल विकास का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं है बल्कि स्वयं रोजगार सृजित करना भी है। आप नौकरी करने की अपेक्षा नौकरी को सृजन कर सकते हैं दूसरों के लिए भी। आज अनेक युवा अपने हुनर के दम पर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सब लोगों को इसके तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और ये जो नौकरी की अंधी दौर उससे निकल के स्किल को डेवलपमेंट करना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए। आइए सुनते हैं एक और कजरी।

ये थी विदुषी शारदा सिन्हा। और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसके कलाकार थे मीरा मिश्र एवं सहेली। और आइए अब अरविंद कुमार झा के स्वर में ये गीत सुनते हैं।

राधा मोहन मिश्र के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही युववाणी के आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत।

युवाणी, ये था युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

फिल्म थी चंदू चैंपियन और गायक कलाकार थे अरिजीत सिंह, नक्काश अजीज और देव नेगी। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको

फिल्म डंकी में ये थे सोनू निगम, जावेद अख्तर के बोल थे और प्रीतम का संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया 3 से। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने, समीर की रचना है और अमाल मलिक का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया 3 का ये गीत।

सोनू निगम के गाए फिल्म भूल भुलैया 3 के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज

0: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी

चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत आइए कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ देर बाद, अर्थात शाम 6:10 से। मैथिली संवाद शाम 6:25 पर प्रसारित होंगे। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर, एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7 से। फिल्म संगीत शाम 7:52 से हमारे श्रोता सुन सकते हैं।

आज रात 8:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। रात 8:30 से आप सुनेंगे कुछ मैथिली सुगम संगीत। समाचार संध्या रात 8:45 पर, न्यूज एट 9 9 बजे से एवं उर्दू में खबरें रात्रि के 9:15 से प्रसारित होंगे। कार्यक्रम चर्चा का विषय है, रात 9:30 से हमारे श्रोता सुनेंगे और इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। लोक गीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी रात 10 बजे से और फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम गीतों के रंग रात 10:30 से आप सुन सकते हैं।

और अब कल प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। वंदे मातरम के साथ ही आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा सुबह सवेरे 5:45 पर। कृषि चर्चा प्रातः 5:55 से हमारे किसान श्रोता सुन सकते हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी

जानकारियां हमारे श्रोता प्राप्त कर सकते हैं कल प्रातः 6:05 पर। हमारे केंद्र की भक्ति में प्रस्तुति वंदना प्रातः 6:10 से आप सुनेंगे। रामचरित मानस गान का रसपान हमारे श्रोता कर सकते हैं प्रातः 6:40 से। और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला का प्रसारण समय होगा प्रातः 7:05 से।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के शेष एवं कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। स्थानीय सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं। आज के कलाकार थे राम कुमार मल्लिक एवं गौतम मिश्र। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कुछ ही पलों में हमारे पटना केंद्र से आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

वाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। राज्य सरकार सीतामढ़ी जिला मे स्थित सीताक जन्मस्थली पुनौरा धामक वास्ते तैयार ट्रस्ट डीड के अनुमोदन करैत राजस्व आ भूमि सुधार विभागक ओहिठाम अर्जित 50 एकड़ सँ बेसी भूमि न्यास समिति के निःशुल्क उपलब्ध कराओत। आइ राज्य मंत्री परिषदक भेल बैसार मे एहि आशयक निर्णय कयल गेल। बैसार मे कुल 25 प्रस्ताव पारित भेल। प्रदेशक 211 प्रखंड मे नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय सभ मे आइ सँ पठन पाठन शुरू भऽ गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर जिलाक कासिल गाम मे आयोजित समारोह मे एहि महाविद्यालय मे शैक्षणिक सत्रक शुभारंभ कयलनि। एहि अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत मुख्यमंत्री भागलपुर मे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ कम्प्यूटरक उच्च शिक्षाक वास्ते अत्याधुनिक विश्वविद्यालय के स्थापित करबाक घोषणा कयलनि। श्री चौधरी कहलनि जे सरकार शिक्षाक संग संग रोजगार उपलब्ध करयबा पर सेहो जोर दऽ रहल अछि। ओ कहलनि जे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाक अंतर्गत छूटल पात्र महिला सभक खाता मे 25 जुलाई के पहिल किस्तक राशि पठा देल जायत। श्री चौधरी कहलनि जे भागलपुरक लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु के 30 नवम्बर सँ पहिने आम जनताक वास्ते आवागमन लेल खोलि देल जायत। मानसूनक सक्रियता सँ प्रदेश मे बरखा भऽ रहल अछि। पछिला 24 घंटा मे प्रदेशक उत्तर पश्चिम क्षेत्र मे भारी बरखा भेल। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सिवान जिलाक महाराजगंज मे सबसँ बेसी 81.2 मिलीमीटर बरखा भेल अछि। मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे आइ पूर्णिया जिलाक किछु स्थान पर भारी बरखा भऽ सकैत अछि। प्रदेशक आनो जिला मे सेहो बरखा हेबाक संभावना अछि। एम्हर समस्तीपुर जिलाक सरायरंजनक मुसापुर मे ठनकाक चपेट मे अयला सँ एक महिला समेत दू गोटेक मृत्यु भऽ गेलनि। गया जिला मे सेहो बरखाक क्रम मे ठनका खसबाक घटना मे एक छात्रक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन छात्र गंभीर रूप सँ झरकि गेलाह। नेपालक जलग्रहण क्षेत्र मे भऽ रहल भारी बरखाक कारणे गंडक, बागमती, कमला बलान आ कोसी नदीक जलस्तर मे लगातार वृद्धि हेबाक प्रवृत्ति बनल अछि। बेतिया सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे वाल्मीकि नगर गंडक बराजक सभ 36 फाटक खोलि देल गेल अछि। आइ बराज सँ 1,81,000 क्यूसेक पानि छोड़ल गेल। शिवहर मे बागमती नदीक बढ़ैत जलस्तर सँ नीचा वला क्षेत्र सभ मे पानि पसरय लागल अछि। सीतामढ़ी में सेहो बागमती नदीक जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखल जा रहल अछि। हमर अररिया संवाददाता जनौलनि अछि जे पलासी आ सिकटी प्रखंड में बकरा तथा रतवा नदी में लगातार कटाव भऽ रहल अछि। एहि सँ नीचा वाला क्षेत्र सब में पानि पसरबाक खतरा बढ़ि गेल अछि। कोसी नदीक जलस्तर सेहो खगड़िया में लगातार बढ़ि रहल अछि। मुजफ्फरपुर जिला में औराई आ कटरा प्रखंड के जोड़य वाला पीपा पुल के पूर्ण रूप सँ जलमग्न भेला सँ आवागमन बाधित भऽ गेल अछि। खगड़िया जिलाक बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन लग वाहन चेकिंग मे एकटा दरोगाक पिस्टल आ मोबाइल छीन कऽ भागबाक कोशिश कऽ रहल एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ मे मारल गेल। पुलिस मुठभेड़ मे घायल भऽ गेल। अपराधीक पैर मे गोली लागल अछि जिनक इलाज स्थानीय अस्पताल मे चलि रहल अछि। दरभंगा स्थित डीएमसीएच में कुव्यवस्थाक आरोप में कर्मचारी आ नर्स सभक धरना कार्यक्रम आई सातम दिन सेहो जारी रहल। मधुबनी में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा आमजनक सुरक्षित आ सुगम आवाजाही सुनिश्चित करबाक लेल बरखा ऋतु में सड़क पर बनल खाद

0: सभ के मरम्मति करबाक आदेश देलनि अछि। वैशाली जिलाक जिलाधिकारी बरखा सिंह कर्तव्य मे लापरवाहीक आरोप मे गोरौल अंचलक राजस्व कर्मचारी राजू कुमार के निलंबित कऽ देलनि। दरभंगा जिलाक उजान काली मंदिर लग काल्हि भेल हत्याक मामला मे पुलिस एक अभियुक्त के गिरफ्तार कयलक अछि। ओतहि मधुबनी जिला मे पुलिस साइबर ठगीक मामला मे एक दंपत्ति के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांवघर आज बुधवार है और प्रत्येक बुधवार आप सुनते हैं गांवघर के अंतर्गत घर आंगन।

0: घर आंगन में सब श्रोता लोकन के बहन सबके मोनी दिस नमस्कार संगे सब गोटे के स्वागत करी छिन। लाल बहन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मोनी बहन आ संगे घर आंगन कार्यक्रम में आधी आबादी बहन लोकन के हमरो दिस नमस्कार। मोनी बहन आज तो बुध दिन है आ बुध दिन तो बुझले बात अपना सब अपन बहन लोकन के लिए कार्यक्रम घर आंगन लऽ कऽ अबै छी आ बहुत रास गप सब अपन बहिन सब भेट होइए एक सप्ताह में तो खूब गप करै छी आ काजक गप करै छी।
0: घर आंगन के जखने गप केलौ लाल बहिन तो वह घर आंगन अछि जत सँ निनपन सँ अपना सब सब किछु सीखै छी। धिया पुता जे अपन सब छथिन आ कहै छै ने जे कि शिक्षिका जे पहिल पहिल शिक्षिका माय होइ छथिन तऽ घरे आंगन सँ सीखै छथिन
1: सब किछु सीखै छी घरे आंगन सँ।
0: आइ जे 15 जुलाई अछि तऽ आय विशेष दिन सेहो अछि विश्व युवा कौशल दिवस अपना सब गोटे मना रहल छी। आ विश्व कौशल दिवस के गप केलौं आ अपन बहिन सब के गप नहि करब तऽ केना हैत। वह घर आंगन में अपन बहिन सब निनपन सँ धिया पुता के कौशल के गुण सिखावित छथिन। आ अही बेर विश्व कौशल दिवस 2026 युवा केर भविष्यक लेल ओरियावै के कौशल सँ लैस करबाक महत्व पर जोर दैत अछि जाहि सँ कि रोजगार क्षमता में सुधार होइ नवाचार के प्रोत्साहन भेटै आ सतत विकास के समर्थन भेटै। लाल बहिन ई समावेशी आ लचीला वैश्विक कार्यबल के निर्माणक लेल सरकार शिक्षक उद्योग आ युवा सब के बीच के सहयोग के सेहो बढ़ावित अछि।
1: बहुत नीक गप अहाँ कहलहुँ हँ मोनी बहन। देखियो इमे सबसे ई महत्वपूर्ण छै ई हमरा युवा भाई बहन लोकन के मने जागरूक करबाक अछि जे देखियो कोनो नौकरी तऽ सीमित अछि तऽ सब जे चाहथिन सरकारी नौकरी हैत से नहि तऽ कौशल विकास हुनर हेबाक चाही आ जाहि चीज मे हम प्रशिक्षण लऽ कऽ जे कोनो काज करै छी तैं ओकर जे कौशल प्रशिक्षित भऽ कऽ जे काज करै छी तऽ ओ पूँजी हमर डूबैए नहि आ ओ काज हम नीकसँ करै छी।
0: सब गोटा के रुचि अलग छै क्षमता अलग अलग होइ छै। कतेक गोटे के धियापुता के युवा सबके देखै छी नवाचार तऽ जते किछु नव कऽ रहल छथिन तऽ हुनका बहुत बेसी प्रोत्साहन भेटतनि
1: आ एतबे नहि आ ओकर लेल से ठाम ठाम पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलल जा रहल अइ आ ओकरा प्रशिक्षित कऽ रहल छथि सरकार द्वारा आ ताहिके बाद जेना केओ केओ अहाँ कहबे कयलहुँ हमरा नवाचारमे केओ पेंटिंग बनाबऽ चाहै छथि तऽ ओ पेंटिंगसँ हुनका रुचि छनि तऽ केओ अहाँके छोट छोट उद्योग लगाबऽ चाहै छथि तऽ ओ उद्योग कऽ सकै छथि ओहि लेल हुनका पैसा भेटै छनि
0: होइ मुदा ओहिमे ओ बढ़िआँसँ स्किल्ड यानी कि कुशल
1: कुशल होइ तै ने कौशल विकास तै ने कहल गेलै जे प्रशिक्षित होइत तखने ओ ओहिमे से पैर बढ़ावत आ जब प्रशिक्षित नहि छथि तहन जे अहाँ कऽ लेलहुँ तहन अहाँके से ओ काज सफलता नहि भेटत।
0: प्रशिक्षण प्राप्त कयलाके बाद लाल बहिन सरकार दिससँ जे बैंकमे ऋण भेटैत अछि ओहिमे सेहो राहत भेटैत अछि आ बहुत आसानीसँ देखै छथिन जे कि अच्छा ई प्रशिक्षण प्राप्त कयने छथिन तऽ सुलभ होइ छै कोनो काज करैमे। आ युवा सबके रोजगार आ उद्यमिताके लेल कौशल विकसित करबाके लेल प्रोत्साहित कऽ युवा

0: सशक्तिकरण के बढ़ावा दैत अछि ओजुका दिन जे आइ 15 जुलाई के अपना सब मना रहल छी लाल बहिन।
1: आ एकर मुख्य उद्देश्य इएह अछि जे हमर युवा लोकनि हतोत्साह नहि होइत, जज्बा राखैत आ अपन जै काज मे रुचि छन ओहि काज के ओ बढ़ाबैत आ पैसा के चिंता नहि करैत। किया तब जहन हुनका हुनर भऽ जेतनि आ जहन प्रशिक्षित भऽ जेता तऽ पैसा तऽ सरकार तरफ से सेहो बहुत रास एहन योजना अछि जाहिसँ कि पैसा देल जाइए, ताहि दुआरे से ओ अपन काज मे रुचि राखैत आ आगू बढ़ैत। आ बहुत काज एहन छै जे युवा लोकनि कऽ सकै छथि, उद्यमी बनि सकै छथि। ताहिके बाद अहाँके बहुत रास एहन पशु के मान खेती गृहस्थी के क्षेत्र मे सेहो जेना बकरी पालन, बत्तख पालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, इहो सब कऽ सकै छी अहाँ सब।
0: एकरा संग संग आप देखै छी औषधि खेती मे सेहो व्यवसायीकरण भऽ रहल अछि। आ लाल बहिन अपन जे युवा सब छथिन तऽ ओ तकनीकी व्यवसायिक उद्योग से संबंधी प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता के बेसी मजबूत करैत ये अपना सब कामना करै छी।
1: एतबा नै मोनी बहिना, ठीके कहलहुँ हँ, खाद्य प्रसंस्करण मे जे उद्योग जाय मे अचार, जैम, जेली, सतुआ, बेसन, बड़ी, तिलौरी, अदौरी, बहुत काज छै। कोनो काज मोनी बहिन छोट नै होइए, बशर्ते कि अहाँ ओहिमे अहाँके जज्बा कते आ रुचि कते आ अहाँ मन सँ करू तऽ अहाँके निश्चित रूप सँ सफलता भेटबे करत। आप
0: धियापुता सब युवा सब तकनीक दिस बहुत आगू सेहो बढ़ि रहल छथि, तऽ युवा के प्रौद्योगिकी आधारित कार्यस्थल के अनुकूल ढालवा मे मदद करे के लेल डिजिटल आ AI कौशल में प्रोत्साहित सेहो करैत छी।
1: हाँ, निश्चित रूप से आइ काल्हि तऽ देखबे करै छी जे एकर ज्ञान तऽ हेबाके चाही।
0: सतत आ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उद्योग में करियर के लेल हरित कौशल विकास के सेहो एहि मे मदद भेटैत अछि। ई शिक्षा प्रणाली आ विकसित भऽ रहल श्रम पसार जे बाजारक मांग अछि श्रम, ओकरा बीच में कौशल के अंतर जे भऽ जाइत अछि ओकरा कम करैत अछि।
1: बहुत नीक गप अहाँ कहलहुँ। आ
0: लाल बहिन, एतबे नै, एहि सँ संचार, टीम वर्क, अनुकूलनशीलता आ नेतृत्व एहन सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित सेहो करैत अछि। ई जे अपना सब आइ मना रहल छी 15 जुलाई का विश्व युवा कौशल दिवस, अपन जे युवा सब छथिन एहिसँ जरूर से लाभान्वित हेता अवश्य। जखन अपना सब ओहिना बहिन सब से चर्चा करै छी घर आंगन में, तऽ निश्चित छी जखने बहिन सब के एहि दिस जानकारी भेटतै तऽ ओ सब अपन घर में अपन युवा सब छथिन हुनका सब के प्रोत्साहित जरूर करथिन। घर में
1: बहिन सब गोटा रहै छथि ने,
0: आ बाट देखथिन कि अहाँ किया परेशान होइ छी,
1: किया अहाँ हतोत्साह होइ छी, किया उदास होइ छी, काज बहुत छै, करै वाला के कमी छै।
0: एकदम अहाँ के जे में रुचि अछि ओहि में आगू बढ़ू।
1: आ जे अभिभावक छथिन हुनको सहयोग करबाक चाही। ई नहि जे कोनो ई नहि छै जे बच्चा जिनका पढ़ऽ में रुचि नहि
0: लाल बहिन, जखन धिया पुता सब चारों दिस थाकि जाइ छथिन तऽ घर में माय लगाबे छथिन, कहले जे माँ हम अब की करू, किछु नहि बुझि पड़ैए, आगू
1: तो रास्ता देखाओ अब अहाँ।
0: एकदम माय होइ छथिन जे सब चीज आगू बढ़ाबे छथिन धिया पुता के, तऽ कार्यक्रम घर आंगन में अपनो सबके आगा बढ़वा के चाही लाल बहिन, आ गीत नाद सुनबा के चाही, सुनेबा के चाही।
1: हाँ, तो सुनबा दै छी ने अपन श्रोता लोकनि।

0: तऽ अरविन्द कुमार झाके गाओल अखन अपना सब ई भगवती गीत सुनलहुँ।
1: आशा करै छी जे भगवती सबके एना प्रसन्न राखैत, स्वस्थ राखैत, जे जे जिनका जाहिमे रुचि होनि ओ काज करैत, तऽ भगवती हुनका सफलता देत।
0: लाल बहिन, अपना सब आई विश्व युवा कौशल दिवस के गप केलहुँ आ एहि बेर 2026 के जे मुख्य विषय अछि साझा भविष्यक लेल कौशल, ई जे छै से ई दिन युवा के रोजगार, उद्यमिता आ सतत विकास के लेल आवश्यक डिजिटल, हरित आ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जेकरा अपना सब AI कहै छी, एहन भविष्य के लेल उन्मुख कौशल के, एहि कौशल के लेल सशक्त बनेबा के लेल केंद्रित अछि। उचका दिन 15 जुलाई आ कार्यक्रम अपना सब घर आंगन में सब बूथ के प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारा सेहो आनैत छी।
1: तऽ आइ आब ओकर बेर भऽ गेलै हमर सबके कार्यक्रम में, तऽ अपन श्रोता लोकनि के आब सुनबा दै छियनि कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
0: बेस तो सुनी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: बुधवार, बुधवार का दिन है

0: जी हाँ, बुधवार का दिन है और मैं हूँ आपका दोस्त राजेश और कार्यक्रम का नाम है पैरामेडिकल है पारस। जी हाँ, क्या सोच रहे हैं, पैरामेडिकल है पारस, हाँ, जिसमें हेल्थ से संबंधित कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर हेल्थ सेक्टर में आपने पढ़ाई की तो पढ़ते पढ़ते ही आपके लिए रोजगार मिल सकता है, बनिस्पत कि आप अच्छे से पढ़ाई किए हों, चाहे पैरामेडिकल के कोर्सेज हों, ANM, GNM हो, BSc नर्सिंग हो या कोई और भी पढ़ाई हो, इसमें पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है। ये अवेयरनेस, ये बातें हम वर्षों से पूरे बिहार के युवा साथियों के लिए लेकर आते हैं बुधवार के ही दिन, और ये दिन नहीं बदला, समय नहीं बदला और इस कार्यक्रम का थीम भी नहीं बदला, बदल गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे युवा साथी, हमारे कल के फ्यूचर। आज जिनके लिए ये कार्यक्रम प्रासंगिक है, कल उनके छोटे भाई बहनों के लिए होगा और अगले साल उनके छोटे भाई बहनों के लिए होगा। और इस कार्यक्रम को सुनते सुनते आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल पढ़ाई की और आज रोजगार में आ गए। आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं या ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं अपने राज्य के, हाँ, एक बहुत ही अच्छे संस्थान जहां पैरामेडिकल की, नर्सिंग की, ANM, GNM की पढ़ाई होती है, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के चक्कनपुर इलाके में है और अब इसका एक सेंटर, हाँ, गुड़ौल में भी खुल गया है, वहां भी आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर नोट करें 9162413233, 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। भले ही आपने सोचा हो कि मुझे MBBS करनी है, हाँ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती, जब एक रास्ते बंद होते हैं ना तो अनेकों रास्ते खुल जाते हैं, बस संभल कर देखने की जरूरत है। और यही काम 10 साल से ज्यादा वर्षों से पैरामेडिकल है पारस कर रहा है और आज भी इस कार्यक्रम की उपयोगिता खत्म नहीं हुई। राजेश आपका अपना है, आप हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर NP प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम, हाँ, जोड़ते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
2: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, हाँ। बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
1: जानकारियों का अभाव है,
2: हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है
1: जी।
2: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ ISc बायोलॉजी और BSc करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
1: जी,
2: है
1: जी।
2: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है, तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि BPT हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद BHM हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है
1: जी। एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
2: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
2: बिल्कुल नहीं,

0: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया आपसे।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है कोई भी विषय हो। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स चाहे

0: वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?
0: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
1: 2023 से?
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
1: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
0: कहीं
1: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है, हाँ। सब कुछ समान है,
0: हाँ।
1: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
0: देना, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, नहीं। जात नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर नोट कर ले, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, दूसरा नंबर है 9162413233। चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: तब अही प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस के संगे आब लाल बहिन घर आंगन समेटवाक बेर से हो भौ गेल अछि अपना सबके, त समेटी आ खेती गृहस्थी में किसान भाई के स्वागत करी।
4: हाँ, किसान भाई लोगन के स्वागत करे।

0: कार्यक्रम में आ देखियौ किसान भाई लोकनि तऽ अपन काजमे एखन खूब जुटल छथि आ जे छिटफुट कनि जे बरखा भेल से तऽ किसान भाई लोकनिके लेल रामबाणके काज करैए आ बहुत किसान भाई लोकनि तऽ अपन रोपनीमे लागल छथि खूब आ जिनका बीया नहि तैयार भेल छनि तऽ किनो बेसाहिके से अपन लागल छथि कतेक आदमी पटौनी कऽ
1: समयसँ काज भऽ जाय एहिमे जुगाड़मे किसान भाई सब लागल छथिन
0: आ कोनो काज जहन होइ छै समयपर तऽ ओकर लाभ बेसी रहै छै आ अगता या पछता पाछू भऽ जाइ छै तऽ ओकर तऽ उत्पादनो कनि पछुआ जाइ छै आइ अपना सब चर्चा करब मृदा स्वास्थ्य कार्ड एकर की उपयोगिता छनि किसान भाई लोकनिके लेल से तऽ किसान भाई लोकनि खूब नीक जेना बुझै छथि आ सब किसान भाई लोकनिके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना लेबाक चाही आ जिनका बनल छनि तऽ नीक बात जिनका नहि छनि बनल हुनको बना लेबाक चाही
1: एकदम बड़ आवश्यक अछि अपन खेतके लेल जे जँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनल अछि तऽ अपना सब संतुलित खादक व्यवहार करै छी मौसमके सङ्गे आ की आवश्यकता अछि कोन खेती हैत अपन खेतमे कोन फसिलक जँ सही सही उत्तम सब काज होइत अछि तऽ किसान भाईके उत्पादन खूब नीक होइत अछि आ मेहनत एतेक उत्पादन नीक होइ एहिके लेल तऽ किसान भाई करै छथि
0: छै कि आ जब बुझल रहै छै तहन ने जे कोन खाद कोनमे देल जाय कोन खेतमे कथीके कमी छै तहन बुझल रहैए ताहि हिसाबसँ कऽ लै छै आ जब बुझले नहि रहत तऽ कोना करबै तहन तऽ मेहनत सबटा बेकार चलि जायत खर्चो बेकार चलि जायत
1: ई एकटा एहन महत्वपूर्ण दस्तावेज होइत अछि किसान भाईके लेल जे माटिमे जे उपलब्ध 12 प्रमुख पोषक तत्व जेनाकि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जिंक आयरन आ एकर जे पीएच मान छै आ कार्बनिक कार्बन ई सबटा जानकारी एहि महत्वपूर्ण जे दस्तावेज कहलहुँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड सब किछु जानकारीमे लिखल रहैत अछि एकरा माध्यमसँ किसान भाईके सटीक मात्रामे उर्वरक दऽ सकै छथिन खेतीमे लागत जे छै से 8-10% तक कम भऽ सकैत अछि एहिके माध्यमसँ
0: देखियौ तऽ कतेक मतलब महत्वपूर्ण अछि तऽ एकर जानकारी भेनाइ से किसान भाई लोकनिके आवश्यक छनि तखने ने एहिसँ लाभ उठा सकता आ जब बुझलै रहतनि तऽ केना लाभ उठेता
1: ई तऽ लागतके कम कहलहुँ लाल बहिन 8-10% आ उपज जे अछि सेहो 5-6% तक वृद्धि भऽ सकैत अछि
0: बुझियौ तऽ कतेक एहिसँ लाभे लाभ भेल आ एहि कार्डसँ से बिना जाँचक आ अंधाधुंध खाद देबाक समस्या खत्म भऽ जाइत अछि आ कार्ड ई कहैत अछि जे माटिमे कोन तत्वक कमी या बेसी अछि कहबे केल हुए जहन कमी आ बेसी बुझबामे आयत तखने ने ओकर से सही उपयोग कऽ सकै छी
1: एहिसँ खेतीके लागतमे कमी आबैत अछि किसान भाईके सिर्फ आवश्यक उर्वरक पर ही खर्च करऽ पड़ैत अछि जाहिसँ अनावश्यक खर्चा सेहो बचि जाइत अछि फसिलक गुणवत्ता आ उपजमे वृद्धि होइत अछि उचित पोषक तत्व जखन खेतमे अपना सब दै छी तऽ जखन फसिलके भेटैत अछि तऽ फसिल स्वस्थ होइत अछि
0: उत्पादन बढ़ैत अछि
1: एकदम आ उत्पादन बढ़ैत अछि तऽ किसान भाई सबके खूब मोन प्रसन्न रहै छै
0: देखियौ कोनो काजमे अहाँ मेहनत करै छियै सफलता भेटैया तऽ मोन तऽ प्रसन्न हेबे करत ने
1: ई कार्ड जे अछि लाल बहिन जैविक खाद आ सूक्ष्म पोषक तत्वक उपयोगक बढ़ावा दैत अछि जाहिसँ लम्बा समय तक खेतक माटि उपजाउ बनल रहैत अछि किसान भाई अपन माटिक प्रकृति क्षारीय अछि अम्लीय अछि या सामान्य अछि ई अनुसार सब उपयुक्त आ की लाभदायक फसिलक चुनाव एहि कार्डके माध्यमसँ किसान भाई कऽ सकैत छथि
0: कहबे केलहुँ हेँ जैविक खादके जहने किसान भाई लोकनि उपयोग करता तऽ माटि बेसी दिन तक स्वस्थ रहतनि छै कि नहि आ जहन माटि स्वस्थ रहै छै उत्पादन बढ़िआँ होइ छै जहन उत्पादन नीक होइ छनि तऽ किसान भाई लोकनिके मोन खनहन रहै छनि प्रसन्न रहै छनि आ तखन गीत नाद सुनबाके मोन होइ छनि कि
1: तऽ किएक नहि किसान भाईके गीत नाद सुना दियनि मनोरञ्जन
0: आ देखियौ मौसमो तेहने गीत अछि एखन सुनऽके तऽ सुना दै छियनि एकटा कजरी

0: विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में अपना सब एक कजरी सुनो किसान भाई के सुने लो खूब नीक लागल है।
1: जेहने मोनी जेहने बेर ओहने देखियो बदरा घुर घुर के तो अबैया, भले बरसैया नहीं मुदा अबैया तो घुर घुर के तो बेर तखन कजरी सुनबा के समय तो सुनबा दलिन अपन श्रोता लोकन के।
0: आप देखियो लाल बहिन कजरी सुनला के बाद किसान भाई के काजक गप सेहो आप सुना दी छियन। तो कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना सुनित छी, वाचन आ संकलन छिन सविता कुमारी के, प्रस्तुति असद दाऊद के।
1: कृषि गतिविधि के संग हम उपस्थित छी लाल बहिन, किसान भाई बहिन।

लोकन के वास्ते भिनसर से 6 बजे से साँझ 6 बजे तक कृषि फीडर से बिजली भेटतन। मुख्यमंत्री कहलन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लक्ष्य के लाभ उठावत, पात्र परिवार के योजना के बेसी से बेसी लाभ देवाक वास्ते जन जागरूकता बढ़ावल जाए, संगे सब प्रक्रिया के सरल और समयबद्ध बनावल जाए। मुख्यमंत्री कहलन कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसान के सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करौला से कृषि लागत कम हेतन ओ स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ावा भेटत। ओ कहलन जे बिहार में फ्लोटिंग सोलर के खूब संभावना है, राज्य के जलाशय व अन्य उपयुक्त स्थान के वैज्ञानिक अध्ययन क नव परियोजना के कार्य योजना तैयार कयल जाए, जाहि से बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में नव उपलब्धि हासिल भ सकय। बैसार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी, बिहार में ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव नवीकरणीय ऊर्जा के विषय में विस्तार से जानकारी दलन। बैसार में राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करवा पर सेहो विचार कयल गेल। मुख्यमंत्री कहलन भविष्य के ऊर्जा आवश्यकता और औद्योगिक विकास के ध्यान में रखैत बिहार के स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लेल तैयार करब आवश्यक है। ओ कहलन जे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करबाक लेल निवेशक के लेल अनुकूल ओ पारदर्शी वातावरण विकसित करबाक निर्देश देलन। मुख्यमंत्री कहलन जे वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थिति ओ जीवाश्म ईंधन ओ परिवहन श्रृंखला से जुड़ल अनिश्चितता के देखैत भारत के स्वच्छ ओ आत्मनिर्भर ऊर्जा के बढ़ेबाक आवश्यकता है। एतबे नहि स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, एखन खुरपक्का मुँहपक्का रोग नियंत्रण कार्यक्रम 10 जुलाई 2026 से बिहार के सब जिला में टीकाकरण अभियान शुरू भ गेल अछि। ई केवल गाय बरद बाछा बाछी ओ महीस के लगाओल जायत, ऐसा गोवंश सुरक्षित होयत, समृद्ध किसान ओ समृद्ध बिहार हैत। ई टीका निःशुल्क लगाओल जायत। ई बीमारी में गाय महीस के बोखार, मुँह में छाला, लंगड़ापन, दूध उत्पादन में कमी के कारण बनैत अछि। तै किसान भाई बहन लोकनि के बेर पर पशु के टीकाकरण करा देबाक चाही, जाहि से पशु स्वस्थ होयत ओ किसान के आमदनी बढ़तन। टीकाकरण से बहुत लाभ होयत अछि, जेना खुरपक्का मुँहपक्का रोग से सुरक्षा, दूध उत्पादन में वृद्धि, पशु के स्वास्थ्य व वजन में सुधार, आर्थिक लाभ व रोग के नियंत्रण होयत अछि। कृषि मंत्री विजय सिन्हा कहलन जे राज्य में उर्वरक भारी मात्रा में उपलब्ध अछि, कोनो जिला में एकर कमी नहीं अछि। उर्वरक मामला में कृषि मंत्री शुक्र दिन मीठापुर कृषि भवन में अधिकारी के संग समीक्षा बैसार केलन। कृषि मंत्री कहलन उर्वरक के उपलब्धता ओ वितरण व्यवस्था के निगरानी कयल जाए, कोनो प्रकारक लापरवाही बर्दाश्त नहीं कयल जाए। बैसार में अधिकारी लोकनि कहलन जे आवश्यकता के अनुरूप सब जिला में नियमित रूप से उर्वरक के आपूर्ति सुनिश्चित कयल जा रहल अछि। कृषि मंत्री कहलन जे किसान लोकनि उर्वरक जखन कीनैत छथि तऽ रसीद अवश्य लऽ लेथि, जँ विक्रेता निर्धारित मूल्य से बेसी लैत छथि ओ गुणवत्ता में गड़बड़ी बुझबा में आबय तऽ सूचना विभागीय हेल्पलाइन नंबर 0612233555 ओ व्हाट्सएप नंबर पर 7766085888 पर संपर्क करैत। बस आब एतबे, फिर अगला दिन बुध दिन हम फिर उपस्थित रहब।

0: कृषि गतिविधि के संग।
1: तो किसान भाई अपना सबकन सुने छल में कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना, वाचन आ संकलन सविता कुमारी के आ प्रस्तुति असद दाऊद के छलन। ऐसे किसान भाई बहुत बहुत लाभान्वित हेतै यह अपना सब उम्मीद करै छियन। आ लाल बहिन कार्यक्रम खेती गृहस्थी में एतेक नीक नीक जानकारी देलियन, अहाँ कृषि गतिविधि पर आधारित सूचना सेहो किसान भाई के कहलियन, तो संग संग मनोरंजन फिर किया
0: मनी बहन जखन गीत नाद होते रहे छे ने तखने कोनो काजो करब मन लगे छे, तो आओ अपन किसान भाई लोकन के फिर एक सुंदर संगीत सुनवा दियन।
1: बेस

0: मोनी बहन एखन अपना सब सुन रहल छन हम ई झूमर सुनू सुनू नवकन्या हे श्याम मोहन मिश्र के स्वर में तऽ देखलहुँ मोनी बहिन अहूँ खूब झूमि रहल छलहुँ आ ई गीत एहन छलए झुमाबयवला आ देखियौ हमर जे युवा भाय बहिन छथि माने हमर भाइ लोकनि जे ओ अपन गाम छोड़ि कऽ विदेश जाय चाहैत छथि ओतय निश्चित रूपसँ नहि जयबाक चाही किएक तऽ अपने देशमे बहुत रास एहन काज अछि जे हमसभ रोजगार अछि जे हमसभ खूब प्रसन्नतापूर्वक रहि सकैत छी तऽ की आवश्यकता अछि जे हम विदेश जायब हाँ एहि लेल कनि धैर्य रखबाक आवश्यकता अछि की आ मौसम की कहैए मोनी बहिन से अपन किसान भाइ लोकनिके पहिने कहि दियौ
1: एकदम एकदम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जे मौसम के जानकारी आयल अछि बेगूसराय ई मौसम के जानकारी 19 जुलाई तक अछि बेगूसराय के छोड़ि कऽ उत्तर बिहार के बेसी जिला में 15 जुलाई सँ 17 जुलाई के दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के संभावना अछि संगे कतो कतो तेज अन्हर आबि सकैत अछि हल्लुक सँ मध्यम वर्षा भऽ सकैत अछि आ 16 जुलाई के आसपास मध्यम सँ भारी वर्षा हेबाक संभावना छै एहि समय मे किसान भाइ अखन पूर्वानुमान के अवधि मे जे छै बेसी जिला मे अधिकतम तापमान जे छै से 19 सँ 32 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 34 सँ 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि वर्षा के संभावना के देखैत किसान भाई जिनका पास पटौनी के पर्याप्त सुविधा हुए ओ 21 सँ 25 दिन वाला धान के बीया के जे छै अखन रोपनी कऽ देथिन आ रोपनी से पहले खेतक अंतिम उड़ियान के समय प्रति हेक्टेयर 25 सँ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस 30 किलोग्राम पोटास आ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट के व्यवहार खेत में करथिन एकरा संगे किसान भाई मानसून के प्रारंभिक चरण में वर्षा के कमी के कारण जे ऊंच वाला जमीन हुए जेमे धानक खेती संभव नहीं अछि ओतय तिल के खेती वैकल्पिक फसल के रूप में किसान भाई अपना सके छथिन हाँ,
0: तिल के खेती में पानि कम लगे
1: तिल के बाउग जुलाई के मध्य तक कैल जा सकैत अछि बाउग से पहले जे छै बीया के थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीया के दर से उपचारित करैत कतार से कतार 30 सेंटीमीटर आ पौध से पौध 10 सँ 15 सेंटीमीटर के दूरी अवश्य राखैत किसान
0: एखन एकर उचित बेर होय तऽ तिल के फसल लगा सकै छी
1: तिल के संग संग किसान भाई उड़ीद के बाउग सेहो कऽ सकै छथिन एकर जे उन्नत प्रभेद अछि ओकरा प्रयोग करथिन आ बाउग से 2 सँ 3 दिन पहले बीया के कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीया के दर से उपचारित करथिन तकर बाद बाउग करथिन आ बाउग से ठीक पहले राइजोबियम कल्चर से सेहो उपचारित करनाए बड़ आवश्यक है
0: देखियो मोनी बहन ई तो अपना सब सब दिन कहे छन अपन किसान भाई लोग के कोनो फसल लगाबी ओ तखने रोग रोधी हैत जहन की ओकरा बीजोपचार कऽ के लगेबै तऽ ओ तो बड़ आवश्यक है जे ओकरा बीजोपचार कऽ के लगेबाक चाही तखने अहाँ के उत्पादन नीक हैत
1: आ नव बाग बगीचा कृषि वानिकी पौधक रोपनी करबा के लेल वर्तमान समय एकदम उपयुक्त अछि
0: एखन सेहो लगायल जा सकैए नव गाछ
1: रोपनी से पहले दीमक आ उज्जर सुंडी से जे बचावक लेल किसान भाई खद्धा में क्लोरपाइरीफास 20 EC के 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानि में घोर कऽ तखन उपचारित कऽ देथिन
0: हाँ तऽ देखियौ आब हमर सबके कार्यक्रम जे खेती गृहस्थी आब ओ समेटबाक मोनी बहिन बेर भऽ गेलै आब एकरा समेटी अपन किसान भाई लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लै छी नमस्कार मोनी बहिन
1: नमस्कार लाल बहिन

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 211 नए डिग्री महाविद्यालयों में पठन पाठन का किया शुभारंभ। कहा, भागलपुर में खुलेगा एआई और कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राज्य मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए बिहार ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी। सीतामढ़ी जिले के टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार। पाकिस्तान से संपर्क की हुई पुष्टि। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर। वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के कासिल गांव में आयोजित समारोह के दौरान इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की उच्च शिक्षा के लिए अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की।
1: आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम
0: हो। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत छूटी हुई पात्र महिलाओं के खाते में 25 जुलाई को पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी।
1: 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई हैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक साथ 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य का शुभारंभ किया।
2: नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। नव स्थापित महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं इन महाविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए 3,600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने राज्य में एक साथ 211 डिग्री महाविद्यालयों की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नए महाविद्यालयों की स्थापना से राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। राज्य मंत्री परिषद ने बिहार ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई नियमावली के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर दर और शुल्क की अधिकतम सीमा तथा उनके निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया तय की गई है। नियमावली में होल्डिंग, पंचायत क्षेत्र में व्यापार और उद्योग, पंचायत की ओर से दी जाने वाली सेवाओं तथा अन्य शुल्क से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। नई नियमावली लागू होने से ग्राम पंचायतों को कर और शुल्क की वसूली में आसानी

0: आसानी होगी। इससे पंचायतों की स्वयं की आय ओएसआर बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मोटर वाहन टैक्स में बदलाव को भी मंजूरी दी है।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दो पहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में एआई से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। बैठक में केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले में समेकित थारू विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की अवधि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य की काराओं में अनुबंध के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मासिक मानदेय 18,800 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने जेल में बंद कैदियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम आश्रित को मुआवजा भुगतान के लिए नीति बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटकीय सुविधाओं को विस्तार देना है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों के मामले में राज्य देश भर में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के माध्यम से 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।
2: बिहार पर्यटन क्षेत्र का पुनर्गठन कर प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों का स्थापना की दिशा में कार्य किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यटकों को सुविधा देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, पर्यटन नीति और निवेश प्रोत्साहन से राज्य में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह बिहार के युवा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा अवसर है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के काढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इनपुट पर सीतामढ़ी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। पुलिस के अनुसार इनके पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से संपर्क की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं तथा उनके डिजिटल संपर्कों की जाँच की जा रही है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्टल और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज नालंदा स्थित

सांग स्मारक परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने नालंदा की अकादमिक विरासत को विश्व की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नव नालंदा महाविहार के प्रयासों की सराहना की और संस्थान की भावी योजनाओं में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। जाने माने शिक्षक और जन सुराज नेता डॉक्टर के सी सिन्हा भाजपा में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई।

0: सदस्यता ग्रहण की। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने युवाओं से कौशल विकास अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के महाराजगंज में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों में, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर समस्तीपुर जिले के सरायरंजन के मूसापुर में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं गया जिले में बिजली गिरने की घटना में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। आज बराज से 1,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
2: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी अभियंताओं की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। विभाग ने तटबंधों और संवेदनशील स्थलों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर शिवहर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि पलासी और सिकटी प्रखंड में बकरा और रतवा नदी लगातार कटाव कर रही है। इससे निचले इलाकों में पानी फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोसी नदी का जलस्तर भी खगड़िया में लगातार बढ़ रहा है। जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी शिव कुमार दत्ता का आज 68 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वे बिहार की ओर से संतोष ट्रॉफी खेल चुके थे। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत परवाहा में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का फंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिला अंतर्गत जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 30 मवेशियों को बरामद किया है। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र से एसएसबी, एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीम ने एक तस्कर को 109 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 211 नई डिग्री महाविद्यालयों में पठन पाठन का किया शुभारंभ। कहा, भागलपुर में खुलेगा एआई और कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राज्य मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए बिहार ग्राम पंचायत कर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी। सीतामढ़ी जिले के टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। पाकिस्तान से संपर्क की हुई पुष्टि। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
1: मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में अब ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसका शुभारंभ करते हुए जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि अब 36,000 से अधिक होल्डर्स घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से टैक्स जमा कर सकेंगे। इससे टैक्स जमा करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समय की बचत वाली होगी। इधर जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले में पहली बार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई एप्लीकेशन के माध्यम से 1700 से अधिक पंचायत सचिवों, कार्यपालक सहायकों, आईटी सहायकों, हेल्थ मैनेजरों और विभिन्न विभागों के कर्मियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों का ऑनलाइन रेंडमाइजेशन के जरिए स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया। जिला प्रशासन का दावा है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के से स्थानांतरण का यह पहला मामला है। वहीं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने के लिए 21 जुलाई से महादलित टोलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास मित्रों के माध्यम से पात्र लाभुकों के कार्ड बनाए जाए। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय वंदना योजना से जोड़ा जाए। इस बीच सावन माह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। जिला अधिकारी आनंद शर्मा और वरीय पुलिस अधीक्षक योगिंदर कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में जिले के हरलाखी क्षेत्र के कल्याणेश्वर स्थान, बिस्पी क्षेत्र के भैरवा महादेव, कपिलेश्वर स्थान और पंडौल के उगना महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उधर मधुबनी रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। निर्माण कार्य नवम्बर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इधर बनियादगढ़ पुरातत्व स्थल पर चल रहे उत्खनन कार्य की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। 6 स्थानों पर जारी खुदाई में ईंटों की दीवार, आंगन, फर्श, मिट्टी के बर्तन और अन्य पुरातत्व शेष मिले हैं। 175 एकड़ में फैला बनियादगढ़ बिहार का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल माना जाता है। मैथिली ब्राह्मणों का विश्व प्रसिद्ध विवाहिक निराधारण स्थल स्वार्थ सभा इस वर्ष 2 से 12 जुलाई तक आयोजित हुई। इस दौरान 100 से अधिक वर कन्याओं का सिद्धांत लिखा गया। स्वार्थ सभा समिति ने परिचय पंजीकरण के माध्यम से विवाह करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन राशि देने और प्रति वर्ष 10 निर्धन कन्याओं के विवाह का पूरा खर्च वहन करने का संकल्प लिया। वहीं बीते दिनों गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान ने रहिका प्रखंड के धुनसी गनवारी गांव बाबा सलेश मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सकुरी और रयाम चीनी मिलों के निर्माण का कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को लाभ और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
2: सकुरी रयाम जल्द मिलेंगे। सरकार इस प्रयास में लगी हुई

0: माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण होना है। इस वर्ष से ही उसका नींव रखा जाएगा। जो बंद पड़े चीनी मिल है, सरकार का लक्ष्य है कि बंद पड़े चीनी मिल नए चीनी मिल की मिलाकर 25 से 25 चीनी मिलने का लक्ष्य है।
1: इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर हरिंदर कुमार ने जिले के मॉडल सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उधर शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिले के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बीओ अमितेश कुमार ने बताया कि रहिका प्रखंड के सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की संयुक्त जांच के बाद रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है।
2: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
3: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।
4: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

लीजिए सबसे पहले सुनिए फिल्म शागिर्द का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी एवं मन्ना डे ने। मजरा सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग में। गीत रचना थी साहिल लुधियानवी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दोस्ताना से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशा में। आनंद बख्शी के बोल को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पुनः सुनवाएंगे रात्रि 8।
1: अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
2: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय

तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव।

0: सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हों। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के

0: पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
1: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
2: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
3: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
4: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्य आप देख रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में। सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वरण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
3: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
5: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतर कर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पांडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहंड में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में

0: राव और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
1: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
2: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
1: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
3: Special emphasis is being laid on ensuring the smooth conduct of rituals, the nitis as we call, efficient crowd management, cleanliness and sanitation, drinking water, healthcare services, disaster preparedness and effective dissemination of public information. And all the concerned departments of the state government and also many of the government of India, they are working in close coordination to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Ratha Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabbats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers, and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
1: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
4: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं मैथिली सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत। आज आपने जिन कलाकारों को सुना वे थे कुंज बिहारी मिश्र, कृष्णानंद मिश्रा एवं ममता ठाकुर। और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: होने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप

0: में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए

0: नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
0: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को $14 करोड़ मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
1: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि

0: ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
3: Semicon 2.0.
4: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third

0: Corps claimed it carried out retaliatory strikes against U.S. military facilities in Bahrain and Jordan, targeting command centers, aircraft shelters, and other strategic locations. It also threatened to halt all energy exports from West Asia over the blockade. Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. We have a report.
1: The Sensex rose 130 points, almost 0.2%, to close at 77,185. The Nifty added 26 points, or 0.1%, to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3%, and small-cap 100 index jumped almost 0.7%. In the Forex market today, the rupee depreciated by 6 paise to close at 96 rupees and 26 paise against the US dollar. With Ayushi report, Gaurav Dhawanlal for Akashvani News.
0: Three Indian women boxers won gold medals while 10 others claimed silver medals at the Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta today. In the Under 19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in 51 kilogram weight class, while Prachi claimed gold in the 57 kilogram category. In the Under 23 division, Nisha won the gold medal in the 54 kilogram weight class. Neeti Chand, Kajal, Muskan and Priyanka won silver medals. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta. In the US tonight, the match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Earlier, Spain stormed into the final of the tournament. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England tonight for a place in the final. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं आसिया मेमुना। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर दो कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में तीन भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा।

0: जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया के किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए होगी। इससे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनद के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमिकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इख्तिताम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा।
1: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: उस industry को और आगे बढ़ाने के लिए
0: जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि सेमिकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए ये स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
3: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
3: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0% महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहदा भारत और बरतानिया के दरमियान इकतसादी सिफारतकारी

0: के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के दैरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मोहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बहीरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया, ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरई तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी।
0: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय

17 अगस्त को शाई की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाई की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के नौ उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। यह सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया,
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
3: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से

0: समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के तौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पेटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारे यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स है वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे, और दूसरा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है, हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है।
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए।

0: यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इम्पोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन, और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ थे प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के 0 हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें 0 हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें 0 हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% है 0 हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें 0 हो जाएगा, और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी 0 हो जाएगा, और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी 0 हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है, इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारी चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने का डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है, उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स करते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कंट्रीब्यूशन जो है उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं, एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़े। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो

0: हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है एक कोटा के थ्रू, जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़े। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की
1: जी,
2: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे, अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो एफटीएस जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
0: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की, कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी, उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंट

0: ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कंपीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं समझता हूं कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहां पे जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था उसमें काफी धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, यू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबैम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट जो होती है वो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेस जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई है। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
0: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही है। तो अब ज्यादातर

0: जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमईज के हित हैं, उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इंप्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की, और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
2: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीजों में, सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में, वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती है, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि जो डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूं कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड

0: इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा। हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया, थैंक
3: यू, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित

लोक माधुरी सुनने वाले सभी श्रोताओं को गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का नमस्कार। मिथिला क्षेत्र में गुदना गुदवानी का चलन बहुत ही पुराना रहा है। पहले मिथिला के लोक जीवन में गुदना का बड़ा ही महत्व था। क्या महिला क्या पुरुष सभी बड़े उत्साह के साथ अपने हाथ पे शरीर पे गुदना गुदवाते, गुदना से अपना नाम लिखवाते, सुंदर सुंदर चित्र बनवाते। महिलाओं में ये उत्साह और भी अधिक देखने को मिलता। महिलाएं मुख्य रूप से अपने पति का नाम अपने हाथ पे गुदवाती, इससे उन्हें अपने पति का नाम लेना नहीं पड़ता। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने हाथ पर अपने पति का नाम लिखा दिखला देती। एक कारण ये भी था कि हर जन्म

ने उनके पति गुर्दना से लिखा अपना नाम देखकर उन्हें पहचान लेंगे। ऐसी ही कुछ धारणा और विश्वास लिए विवाहित महिलाएं गुर्दना से अपने पति का नाम गुदवाती। आज ये धारणा ये विश्वास समाप्त हो चुका है, अब गुर्दना का चलन नहीं रहा। गुर्दना की जगह अब टैटू ने ले लिया है, जिसका चलन युवाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब नट जाति की महिला घर घर जाकर गुदना गुदवाने के लिए लोगों को आवाज़ देती। उनकी आवाज़ सुनकर इच्छुक लोग घर से बाहर निकलते और गुदना से अपनी पसंद के चित्र बनवाते, अपना नाम लिखवाते। गुदना गुदते समय गुदना गीत की बड़ी भूमिका होती थी। गुदना गुदने वाली महिला गुदना गुदते समय पारंपरिक गुदना गीत गाती, जिससे गुदना गुदवाने वाले का ध्यान उस गीत पे चला जाता और गुदना की पीड़ा का उन्हें एहसास भी नहीं होता।

मिथिला में गाए जाने वाले विभिन्न लोकगीतों में से एक है झूमर। झूमर गीत के माध्यम से मन में उमड़ती घुमरती भावनाओं को बड़ी ही सहजता के साथ व्यक्त किए जाते हैं। झूमर लोकगीतों में सदाबहार गीत कहलाता है। जब कोई गहरी नींद में सोया हो, मीठे सपनों में खोया हो, ऐसे में उसे कोई तंग करता है तो उनका मन खिन्न हो जाता है, क्योंकि नींद बहुत ही प्यारी होती है।

दूरी प्रेम को बढ़ाती है पर मन को सताती है। बिरह में प्रेम उभर कर सामने आता है। जब किसी के पिया परदेश चले जाते हैं तो उन्हें अपना जीवन नीरस लगने लगता है। बिरह की तपिश में उन्हें न भूख लगती है न प्यास। श्रृंगार विहीन हो बिरहीन टकटकी लगाए केवल उस रास्ते को देखती रहती है जिस रास्ते से उनके पिया परदेश गए।

कर सामने आता है जब कोई विवाहिता ससुराल से अपने मायके जाती हैं। मायके जाने के लिए पूरी तरह से सजने संवरने के पीछे उनका कुछ कारण होता है। एक कारण ये कि कहीं भी जाने के लिए सजना संवरना आवश्यक हो जाता है, और दूसरा कारण ये कि सज संवर कर मायके जाने से वहाँ एक संदेश जाता है कि बेटी अपने ससुराल में सुखमय जीवन बिता रही है।

मर्यादा के साथ श्रृंगार का वर्णन करना श्रृंगार करने वाले के मान को बढ़ाता है। जब कोई सुलहो श्रृंगार कर घर से निकलती हैं, तो एक बार उन पर ध्यान चला जाना

स्वाभाविक है। माथे पे बड़ी बड़ी बिंदी, बहती पुरवैया के साथ लहराता आंचल और होठों पे मंद मंद मुस्कान लिए जब कहीं जाती हैं तो उन्हें देख लगता है स्वर्ग से कोई धरती पे उतर आई हो। ऐसा रूप देखकर मन कहता है।

इसके साथ ही लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों के गीतों को सुना उनके नाम इस प्रकार हैं: कुमारी कल्याणी, कुमकुम झा, नीलम झा, लक्ष्मी देवी और ब्रजेश कुमार सुमन।

आलेख और वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का था और प्रस्तुतकर्ता थे कुसुमाकर दुबे। तो अब कार्यक्रम से मुझे यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव को दें अनुमति। नमस्कार।

0: लोक माधुरी। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित ये साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम गीतों के रंग।

श्रोता हो नमस्कार। आकाश में छाए बादल, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, रिमझिम बरसती फुहारें और मन को सुकून देने वाला मौसम, बरसात का यही सुहाना एहसास जीवन में नई उमंग और ताजगी भर देता है। इन्हीं मनमोहक फुहारों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष संगीतमय कार्यक्रम गीतों के रंग में। आज का यह अंक समर्पित है बरसात के कुछ सदाबहार गानों में। ऐसे गीत जिनकी मधुर धुनें और भावपूर्ण बोल वर्षों बाद भी सावन की पहली बारिश की तरह मन को भिगो देते हैं, और बरसात की बात हो और रिमझिम गिरे सावन का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यह सदाबहार गीत अपने मधुर संगीत, भावपूर्ण बोल और दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति के कारण आज भी हर पीढ़ी की पसंद बना हुआ है। फिल्म मंजिल का यह गीत संगीतकार आर डी बर्मन के मधुर संगीत से सजा है। इसके भावपूर्ण बोल योगेश ने लिखे हैं, आइए सुनते हैं।

तो कभी यादों और इंतजार की हल्की सी कसक भी छोड़ जाती है। ऐसे ही कोमल भावनाओं को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरा साया से। यह गीत अपने मधुर संगीत और भावपूर्ण शब्दों के कारण आज भी श्रोताओं के दिल में विशेष स्थान रखता है। इसके संगीतकार है मदन मोहन, जिन्होंने इस रचना को अविस्मरणीय धुन दी। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और इसे अपनी सुरमई आवाज से अमर बनाया लता मंगेशकर ने। तो सुनते हैं।

दोस्तों, सावन के बादल जब आसमान पर छा जाते हैं तो मन अनायास ही उनसे बातें करने लगता है। कभी उनसे मिलने की चाह होती है तो कभी उनसे यह पूछने का मन करता है कि आखिर कहां से आए हो। ऐसी ही भावनाओं का एक बेहद मधुरता से व्यक्त करता हुआ अगला गीत फिल्म चश्मे बद्दूर से। और इस फिल्म का यह मनमोहक गीत अपने सरल शब्दों और मधुर धुन के लिए आज भी बेहद पसंद किया जाता है। इसके संगीतकार हैं राजकमल, गीत के बोल लिखे हैं इंदु जैन ने और इसे अपनी सुरीली आवाज से सजाया है यशुदास और हेमांती शुक्ला ने। तो आइए रिमझिम फुहारों की भीगी भीगी भावनाओं में इस

श्रोताओं, बरसात का मौसम अपने साथ केवल ठंडी फुहारे ही नहीं बल्कि दिल की अनकही भावनाएं भी लेकर आता है। कभी यही बारिश प्रेम का संदेश बन जाती है तो कभी विरह की कसक और गहरा कर देती है। ऐसी ही भावनाओं से सजा है अगला सदाबहार गीत, बरखा रानी जरा जम के बरसो। सबक फिल्म का यह लोकप्रिय गीत अपनी दिलकश धुन और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण आज भी श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना, गीत के बोल लिखे हैं सावन कुमार टाक और इसे अपनी दर्द भरी आत्मीय आवाज से अमर बनाया है मुकेश ने।

श्रोताओं, बरसात का मौसम जब अपने पूरे शबाब पे होता है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं कोई मधुर धुन गुनगुना रही हो। रिमझिम गिरते बूंदें, ठंडी हवाएं और भीगी फिजाएं मन को रोमांच और सुकून से भर देती है। बस इन्हीं एहसासों को शुरू में पिरोता है अगला सदाबहार गीत। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, कालाबाजार फिल्म का यह लोकप्रिय गीत अपने मधुर संगीत और रोमांटिक अंदाज के लिए आज भी बेहद पसंद किया जाता है। इसके संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन, गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और इसे अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने। आप भी आनंद उठाएं।

प्रिय श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों और यादगार गीतों के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। गीतों के रंग के आज के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। फिर मिलेंगे ऐसे ही सुरेले नगमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: गीतों के रंग, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा यह साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमिकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय

0: उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports